खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूँ गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं हूँ गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन.
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. मेरे यानी गगन के साथ जिंदगी को जीने की बातें करते हैं, खुश रहने वाली बातें हम आपके साथ साझा करते हैं और बहुत कुछ खास होता है इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से. ये सारी बातें जन जन तक हम पहुंचा रहे होते हैं. तो 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं कि आपको अपने शहर ग्रेटर नोएडा का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कैसा लगता है. इसके अलावा 8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर बता सकते हैं. जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए. जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है जब हमारे साथ हमारे टीचर जुड़ जाते हैं. वो टीचर जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें तराश रहे होते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी बातें वो हमसे साझा कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं. पढ़ाने की जो बातें वो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि BGMC की पास आउट स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़ रही हैं और उनका जो नाम है वो है प्रियंवदा. 2016 में इन्होंने यहाँ से कोर्स किया जिसका नाम है BGMC. तो प्रियंवदा, आपका फाइनली सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है.
4: थैंक यू सो मच सर.
3: कैसा फील कर रहे हैं, काफी टाइम के बाद आप अपने कैंपस में आए हैं और अपने स्कूल में आए हैं, अपने टीचर से आप मिल रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं?
4: सर, स्कूल वापस आके तो अच्छा लगता ही है. टू मीट ऑल द ओल्ड टीचर्स हु बीन देयर. कुछ टीचर्स तो आई थिंक हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम हियर एंड बाकी जो टीचर्स यहाँ पे, आई ऑलवेज हैड अ वेरी स्पेशल रिलेशन विद ऑल ऑफ देम एंड आई यूज टू वर्क अ लॉट. मैं प्रैक्टिकली 3 साल मैंने फैकल्टी रूम से ही अपनी पढ़ाई की.
3: ओह ग्रेट.
4: बिकॉज़ वहां पे आई यूज्ड टू बी द एडिटर फॉर द न्यूज़पेपर आल्सो, शार्डन्स की.
3: एक्सीलेंट.
4: तो मैं प्रैक्टिकली वहीं पे रहती थी.
3: मुझे यू कहें कि मैं बहुत चक्का क्यों रह गया, इसके पीछे एक वजह है कि मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं कि उनको पता ही नहीं होता कि फैकल्टी रूम कहाँ है. मतलब आपने वहां अपनी कुर्सी जमा ली और लोगों से मिलते रहे, बात करते रहे, तो क्या क्या सीखा उस दौरान आपने?
4: सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई लर्नड वाज द कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क. कि कुछ भी हो, जो भी काम हो, 100% वही उसी को करना है विद फुल फोकस.
3: ग्रेट.
4: एंड लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स. यहाँ पे टीचर्स आर वेरी वेलकमिंग फॉर स्टूडेंट्स टू मेक मिस्टेक्स एंड टू लर्न फ्रॉम इट.
3: एब्सोल्युटली राइट.
4: बिकॉज वो आई थिंक सबसे बड़ी सीख होती है, अगर अपनी मिस्टेक से आप खुद सीख के आगे बढ़ो. तो जो 3 साल मैंने यहाँ पे अपना सीखा है, वो माई टीचर्स हैव बीन माई कॉन्स्टेंट सपोर्ट. इनफैक्ट ऑल माई टीचर्स, स्पेशली एक अभिषेक सर थे, अशरफ सर थे, इन्होंने ही मेरे को पुश किया था यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए.
3: ग्रेट. तो उनका एक्सपीरियंस कैसा?
4: उनके साथ सर सीखने को बहुत मिलता था. उनकी क्लासरूम ऐसे क्लासरूम नहीं लगती थी. इट यूज्ड टू बी मोर लाइक सिटिंग, टॉकिंग टू हिम, वर्किंग विद हिम. वो साथ में काम करते थे बच्चों के साथ एंड लाइक वहां से उससे सीख बहुत अच्छी मिलती थी. टू एक इनफॉर्मल एटमोसफियर जब क्लासरूम में होता है तो लाइक आई थिंक फॉर मी वो बहुत अच्छा सीखने का एक्सपीरियंस था.
3: अभिषेक सर से तो फोन पे बातचीत हो जाती
4: है? हाँ, अभिषेक सर से भी आई हैव बीन इन कॉन्टेक्ट उनके साथ, पर वो थोड़ा सा वो मतलब आप वो बहुत पुश करते हैं स्टूडेंट्स को टू द पॉइंट कि अगर उनको पता है कि व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, वो कितना आगे जा सकता है, तो उनसे तो प्रैक्टिकली हमेशा डांट ही पड़ती रहती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो.
3: अच्छा प्रेमदा, मुझे ये बताइए कि ये जो बहुत कुछ आपने सीखा अपने टीचर से, अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से, मुंबई जब आप गए तो कितना काम आया? आपको लगा कि अगर काश मैं वहाँ ये सारी चीजें मिस कर देती तो मैं यहाँ जीरो से स्टार्ट करती. जो आपने सीखा यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी से अपने टीचर से, कितना काम आया?
4: सब बहुत काम आया. इनफैक्ट मैं यहाँ पे जब मेरे को सेकंड ईयर में शारदन्स का एडिटर बनने का मौका मिला था सेकंड ईयर से, सो मैं 2 years आई वाज द एडिटर हियर. मेरे को एक तो टाइमलाइन, हाउ टू वर्क विद इन अ टाइम लिमिट, एंड स्टार्टिंग जब मैंने एडिटर से की थी तो वहां पे भी मैंने स्टार्ट एज अ राइटर किया था. एंड आई रोट स्क्रिप्ट्स फॉर टीवी शोज, नॉन फिक्शन टीवी शोज. एंड फिर मैं जब क्रिएटिव फील्ड में गई तो एक सर वो जो फाउंडेशन यहाँ बनी थी
3: वो वहाँ काम आया,
4: वो बहुत वहाँ काम आया. इनफैक्ट उसी पे बिल्ड हुआ है मेरा करियर.
3: एक्सीलेंट. ये आंसर में इसलिए जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास कुछ इंटर्न्स आते हैं, बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि हम यहाँ से पास आउट हैं, इतने फैमिलियर हो चुके होते हैं कि वो उस चीज को सीखना या समझना नहीं चाहते. आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बातें अभी शुरू हुई हैं, लेकिन इस मैसेज को मैं अभी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इस बात का संबंध आपकी बात से संबंध है. तो क्या उनको कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ सीखें, किस तरीके से अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं, क्या एक मैसेज होगा?
4: मैं अगर वो मैसेज बताऊं सर, इट इज एक्चुअली कि शारदा में यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. आपको जिस डायरेक्शन में सीखना है, जो सीखना है, टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव हियर. एंड टू द फैक्ट कि आप स्टार्ट करके यू कैन बिल्ड योर फाउंडेशन,
3: राइट,
4: कि आगे व्हेन यू गो इन द वर्ल्ड यू कंटिन्यू योर करियर, इट रियली हेल्प्स. And you can fall back to your foundation anytime. Vapas aake, you can relearn everything from these teachers. They are that open to you as a student. As a pass out, I have passed out in 2016. But to start learning, but to come back to the roots and just talk to the teachers and learn, I think this is the thing. Because learning, I feel there is no age to
3: बिल्कुल,
4: learn.
3: बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, जब चाहें आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. और अगर मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना कि बुनियाद अगर आपकी मजबूत होगी तो उस पर आप इमारत को खड़ा कर सकते हैं. और आपकी बेशक इसमें कोई शक वाली बात है नहीं कि आपकी जो नींव मजबूत रही अपने टीचर्स के सानिध्य में, आपने बहुत कुछ नाम कमाया है, कमा रही है. सो लिसनर्स, मैं बताना चाहूंगा मेरे साथ जुड़ी हुई है, प्रोड्यूसर हैं आप, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं आप, हैं प्रेमवदा. तो प्रेमवदा के साथ बहुत सारी बातें हो रही है. ये परिचय मैं इसलिए बताना भूल गया, लगा अरे नहीं आप नहीं तो स्टूडेंट है. प्रेमवदा, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आपके साथ जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 एफएम. मैं हूं गगन आपके साथ, मेरे साथ हैं प्रेमवदा जो कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर हैं. सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम.

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम। मीडिया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है और कहा जाता है कि ये मजबूत स्तंभ है, और यहाँ स्टूडेंट आते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि शारदा विश्वविद्यालय आपके लिए बाहें पसारे इंतजार कर रहा है। यहाँ का जो मास्कॉम है, यहाँ का जो स्कूल है, बहुत सारे स्कूल में यूँ कहें कि स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं विदेश में, मुंबई में अपना योगदान दे रहे होते हैं। जैसे कि प्रेमवदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि 2016 में यहाँ से पास आउट रही हैं। बीजेएमसी का कोर्स इन्होंने किया, इसके बाद मुंबई का सफर रहा, और उसके बाद जो मैं अभी थोड़ा ऑफ एयर मेरी आपसे बात हो रही थी, 2019 का रुख किया आपने विदेश की तरफ। ये फर्दर स्टडी के लिए आपको जाना हुआ या कुछ प्रोजेक्ट की वजह से जाना हुआ उधर?
1: 2019 में मैं गई थी जर्मनी फॉर अ वन ईयर कोर्स इन फिल्म मेकिंग। मैंने अपना मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग किया है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को एज अ स्पेशलाइजेशन लेके। सो एक साल का मेरा कोर्स था वहाँ पे, मेट फिल्म स्कूल करके एक फिल्म स्कूल है बर्लिन में, एंड वहाँ से आई हैव डन माय वन ईयर ऑफ मास्टर्स।
0: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का कल्चर और वहाँ के कल्चर में कितना जमीन आसमान का फर्क महसूस करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल पे जोर ज्यादा दिया जाता है या थ्योरी पढ़ाई जाती है?
1: वहाँ पे प्रैक्टिकल पे बहुत फोकस रहता है। इनफैक्ट एज अ फिल्म स्टूडेंट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिल्म एज अ ऑडियंस ना देख के, एज अ स्टूडेंट देख के उस पर क्या अपनी क्रिटिक आप दे सकते हो, वो आपकी थॉट बिल्डिंग करवाते हैं वहाँ पे। कि एक फिल्म को अगर आप देख रहे हो नॉट एज एन ऑडियंस बट एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टूडेंट, तो टेक्निकलिटीज पहचानने का और डिफ्रेंशिएट करने का आप में वो टैलेंट एंड वो स्किल वो लोग डेवलप वहाँ पे बहुत कराते हैं।
0: ग्रेट। उसके बाद फिर जो आप जर्नी रही, वो कैसी जर्नी रही वहाँ? मतलब आपने कुछ प्रैक्टिकल वहीं किए, वहीं काम किया, या उसके बाद बैक टू पवेलियन या हिंदुस्तान आना हुआ?
1: जब मैं बर्लिन में थी, इन 6 मंथ्स इनटू माय कोर्स, वहाँ पे तो लॉकडाउन लग गया था बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन। तो फर्स्ट लॉकडाउन वाज, वहाँ पे नोबडी न्यू कि क्या है, कैसे है, क्लासेस कैसे होंगी, क्या होगा। सो कपल ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे मिलके, इनफैक्ट मेरा एक सीनियर है यहीं शारदा का, वो भी वहाँ पे था, हम दोनों ने मिलके एक फिल्म बनाई। एंड प्रैक्टिकल वी थॉट कि जो हमने अभी तक सीखा है 6 महीने में उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। सो स्कूल से वहाँ पे भी बहुत सपोर्ट मिला इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ स्टूडियो, इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे टीचर्स से डिस्कस करना इतनी नॉलेज इन वो कि हम ये फिल्म शूट करना चाहते हैं। सो वो सारा लेके वी मेड एक्सपेरिमेंटेड विद अ शॉर्ट फिल्म, 3 मिनट की फिल्म है, इट इज ऑन लाइक 1 टेक में हमने पूरी शूट करी है, एंड इट इज कॉल्ड कोल्ड मीट। वो लेके भी टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव। जब हमने फिल्म उनको प्रेजेंट करी तो उन्हीं का आइडिया था कि अब इस फिल्म को लेके तुम थोड़ा फिल्म मार्केट एक्सप्लोर करो और सीखो। तो वो भी वहां पे बैठ के किया था कि हम लोग ने फिल्म फेस्टिवल्स में ये फिल्म डाली, फिर सीखा कि कौन सी मार्केट में कैसी फिल्म चलती है, क्या होता है।
0: तो किस लेवल पर वो फिल्म गई आपके?
1: वो फिल्म US में हैज वन अवार्ड्स एज बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, एंड आई वाज नॉमिनेटेड फॉर प्रोड्यूसर आल्सो इंडी फिल्म फेस्टिवल्स में इन लॉस एंजेलिस। इंडिया में भी 2 फिल्म फेस्टिवल्स, ग्लोबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और गोवा फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म हैज been selected and has won award.
0: Oh, great. बधाई हो। आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं, बहुत सादगी से बातें अपनी रख रहे हैं, अदरवाइज तो लोग ये कहते हैं कि आसमान में उड़ रहे होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी बातें हमसे शेयर कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा या इसके आसपास की मैं बात करूँ, इस एरिया में दिल्ली NCR में भी फिल्म फेस्टिवल्स होते रहते हैं, ग्रेटर नोएडा के अलावा मैं बात करूँ नोएडा में भी फिल्म फेस्टिवल है, और आने वाले समय में यहाँ फिल्म सिटी आ रही है, तो क्या कभी कोई यहाँ अपनी फिल्म को लेकर आप आगे गए, एक बात, और दूसरी बात क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ जो फिल्म सिटी आ रही है कितना स्कोप होगा स्टूडेंट्स के लिए? 2 बातें।
1: सर, ये फिल्म तो अभी फेस्टिवल सर्किट में चल ही रही है, मैंने इसका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, क्योंकि माय एम वाज टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल फिल्म मार्केट। इंडिया का तो लाइक बीइंग एन इंडियन एंड बीइंग अ स्टूडेंट हियर वर्किंग इन बॉम्बे, थोड़ा बहुत आइडिया तो अंडरस्टैंडिंग फिल्म मार्केट की थी, बट बाहर का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए दिस फिल्म पर्पस वाज दैट। अब आफ्टर द फिल्म फेस्टिवल सर्किट नेक्स्ट ईयर फिर ये फिल्म हम लोग यहाँ पे नोएडा दिल्ली में थोड़ा उसको करेंगे
0: एक्सप्लोर करेंगे.
1: एंड इन टर्म्स ऑफ अगर यहाँ पे फिल्म सिटी आ रही है फॉर स्टूडेंट्स आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू लर्न द बेसिकली प्रोडक्शन फिल्म प्रोडक्शन जो हम पेपर पे सीखते हैं और जो हम फिल्म सेट पे सीखते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है. एक फिल्म एटिकेट होती है जो सेट पे
0: राइट
1: एज अ प्रोफेशनल जब आप स्टेप इन करते हो फिल्म सेट पे वो आई थिंक क्लासरूम के बियॉन्ड एक लर्निंग है.
0: बिल्कुल सही कहा.
1: वो आप यहाँ पे ऑन पेपर विद टीचर्स जितना सीख सकते हो बट वेन यू स्टेप इन टू दैट फिल्म सेट और वेन यू स्टेप इन टू लाइक इन अ प्रोफेशनल फील्ड वो आई थिंक स्टूडेंट्स विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग जब यहाँ पे फिल्म सिटी बन जाएगी. इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. तो मतलब सबको बॉम्बे नहीं भागना पड़ेगा.
0: दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छा स्कोप रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ से पढ़ रहे हैं यहाँ से पास आउट हो रहे हैं. अभी आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ दी है प्रेमवदा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जब आप फील्ड में उतरते हैं मैदान में उतरते हैं डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं या कुछ और. उस समय बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं कि नो डाउट जैसे आपने खुद कहा कि मैं यहाँ से सीख कर गई थी तो मुंबई में मुझे वो सारी चीज़ें काम आई. कुछ लोग तो जाहिर सी बात है कि अपने समय को ख़राब कर रहे होते हैं 3 साल या 4 साल व्हाटएवर जो भी है उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि मुझे पका पकाया मिल जाए. एक तो धैर्य की कमी होती है दूसरा ये भी होता है कि वो सुनना पसंद नहीं करते. अगर टीचर जाहिर सी बात है टीचर के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट सुनना नहीं चाहते फिर वो डायरेक्टर की या असिस्टेंट डायरेक्टर की कैसे सुनेंगे अगर वो सारी चीजें यू कहें कि जो आप एटिकेट्स की बात कर रहे हैं तमीज की बात कर रहे हैं अगर किसी विद्यार्थी में वो सारी चीजें हैं सुनने की क्षमता है सीखना चाहता है टाइम स्पेंड करना चाहता है तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेगा. और जिस विद्यार्थी के पास ये सारी चीजें नहीं है क्या कहना चाहेंगे.
1: अभी भी टाइम है सीखने को बट वहां पे जाके आपको कोई दोबारा अगर आपने गलती करी कोई बैठ के समझाएगा
0: नहीं समझाएगा राइट.
1: ये एक चीज है वहाँ पे अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी विद वन
0: किसी को मतलब नहीं है आपसे राइट
1: तो फिर वो आगे बढ़ जाएंगे आप अपनी मिस्टेक जहाँ तक आप जब तक रियलाइज करोगे फिर टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन वो थोड़ा एक डिफिकल्ट हो जाता है.
0: क्या कहना चाहेंगे शारदा यूनिवर्सिटी में अपने स्कूल में काफी समय के बाद आप आए हैं रेडियो स्टेशन उस वक्त आपका आपके सामने बन रहा था और आज आप रेडियो स्टेशन में हैं एक और आपका एक साक्षात्कार मैं कर रहा हूँ. सो कैसा फील करते हैं अपनी कॉलेज में आकर रेडियो स्टेशन में आकर क्या कहना चाहेंगे फाइनली.
1: एक्चुअली सर आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि जहाँ पे मतलब व्हेन हम लोग थे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एम्फेसिस ऑन अ फिल्म स्कूल ऑन मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नहीं था एंड नाउ अब आके देख रही हूँ कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हो गई हैं. सो आई फील लाइक कि एज स्टूडेंट्स वी मिस्ड आउट ऑन दैट. हम लोगों को हर चीज के लिए वी वर लाइक कि अपने से वो करते थे
0: जी जी
1: बट नाउ यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज देख के फॉर स्टूडेंट्स आई फील रियली हैप्पी एंड रियली प्राउड.
0: रियली नाइस. सो मैं भी यही कहूंगा आपकी बात का एक निष्कर्ष निकालते हुए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं समझ रहे हैं इस अवसर का उनको फायदा उठाना चाहिए लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं या फ्रीलांस अपना कुछ काम करना चाहते हैं जो सीखने का मौका आपको मिल रहा है जिंदगी शायद वो दोबारा आपको सीखने का मौका ना दे. और अगर आप किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो धैर्य पेशेंस होना बहुत जरूरी है. पैशन के साथ आपने उस पेशेंस को जब आप कैरी करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो आएगा परिणाम जो आएगा वो सुखद आएगा. सो प्रेमवदा मुझे आपसे बात करके वाकई बेहद खुशी हुई बहुत अच्छा लगा और खास बात ये अच्छी लगी कि जो आपने कहा वो मैंने पाया आपकी सादगी में और मैं आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत दुआएं करता हूँ और सब कुछ अच्छा हो बेहतर हो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: थैंक यू सो मच सर.
0: सो लिसनर्स आप थे हमारे साथ प्रेमवदा जो कि एक प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं राइटर हैं. ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर. इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM. मैं हूं गगन मुझे दीजिए अनुमति. जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है प्यार के साथ मोहब्बत के साथ गुजारते चले जाइए. ना टेंशन लेने की जरूरत ना किसी को टेंशन देने की जरूरत. टाटा बाय बाय एंड टेक केयर.
2: प्ले क्या बात है.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सफाई ही आधा ईमान है,
1: यानी स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है।
0: और ये भी तय है, स्वच्छ रहकर ही हम तमाम बीमारियों को मात दे सकते हैं।
1: कैसे, कब कब हाथ धोने चाहिए, चलिए ये हम आपको बताते हैं।
0: खाना बनाने से पहले,
1: खाना खाने से पहले,
0: बच्चों को खाना खिलाने से पहले,
1: शौचालय के प्रयोग के बाद,
0: बच्चों के मल को साफ करने के बाद,
1: बाहर से आने के बाद,
0: पशु को छूने और उनके मलमूत्र को साफ करने के बाद,
1: खांसने और छींकने के बाद साबुन और साफ पानी से अपने हाथों को धोएं और हर बार हाथों को कम से कम 40 सेकंड तक धोएं।
0: हमारा भविष्य हाथों में है,
1: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
0: यूनिसेफ के सहयोग से
1: सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा
0: जनहित में।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं, सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: बाबूजी जरा धीरे चलो। आज मैं बात कर रहा हूँ कि बारिश के मौसम में किस तरीके से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि सच बात तो यही कि सेहत सही तो लाभ गई, और सच कहते हैं जो कहते हैं कि जान है तो जहान है। बारिश के मौसम में सुरक्षित चलिए, स्पीड का ध्यान रखिए, यानी कि थोड़ी कम रखिए स्पीड, क्योंकि आगे गड्ढा है, क्या है कुछ नजर नहीं आता। बारिश के समय में बिजली के खंभों में करंट उतर जाता है तो उससे भी अपने आप को बचाकर रखना है। बारिश के मौसम में पेड़ गिर जाते हैं तो घटना दुर्घटना घट सकती है। जब आप ऑन रोड हैं तो सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या करें क्या ना करें उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है खान पान का। जब खान पान का मैं जिक्र करता हूं तो बात निकल कर ये सामने आती है, एक्सपर्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि उबला हुआ पानी पीजिए, यानी कि पानी से होने बीमारियों से बचने के लिए हमेशा पानी उबाल कर या फिल्टर कर आप पिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आप ले सकते हैं, काढ़ा, हर्बल टी, अदरक वाली चाय या गर्मा गर्म सूप आप पी सकते हैं। बाहर के खाने से यानी कि अपने आप को बचा कर रखिएगा। स्ट्रीट फूड, चाट और पहले से कटे हुए फल बिल्कुल आप ना खाएं, इनमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। पत्तेदार सब्जियों से आप परहेज करें, इस मौसम में हरे पत्तेदार सब्जियों में कीड़े और बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। तो ये कुछ खास बातें, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और भी कुछ बातें हैं उसके बारे में जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, इंस्टीट्यूट ऑल यू सुर शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामोनिशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। बारिश के मौसम में किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्या करें क्या ना करें, ये जानना बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि बारिश के मौसम में ऑन रोड जब आप चल रहे होते हैं, जल भराव की वजह से कहीं कोई गड्ढा है हमें नजर नहीं आता, इसलिए सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। अपनी गाड़ी की जो स्पीड तय है उसे थोड़ा कम रखिए। इसके अलावा घर से थोड़ा 5-10 मिनट पहले आप निकलें ताकि ऑफिस आप समय पर पहुंच पाएं। बिजली के खंभों में करंट आ जाता है, उससे अपने आप को बचा कर रखिए। और ऑन रोड अक्सर पेड़ गिर जाते हैं, तो वहां पर कोई घटना दुर्घटना ना घटे, वहां से अपने आप को बचा कर निकालिएगा। और कुछ खास बात है जैसे कि घर की देखभाल के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि खान पान का ध्यान रखिएगा, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आप खा सकते हैं और बाहर के खाने से परहेज करेगा। अब बात कर लेते हैं घर की देखभाल की, यानी कि होम केयर। मच्छरों को पनपने न दें, क्योंकि जब बीमारी नहीं होगी और सेहत सही होगी तो लाभ कई होंगे। घर के आसपास कूलर या गमलों में पानी जमा न होने दें ताकि डेंगू मलेरिया से बचाव हो सके। सीलन और फंगस से अपने आप को बचा कर रखें। अलमारी और कपड़ों को सूखा रखने के लिए कपूर या सिलिका जेल के पाउच का इस्तेमाल आप करें। वेंटिलेशन जरूरी है, जब बारिश थमे तो थोड़ी देर खिड़कियां खोलें ताकि घर के अंदर की नमी और उमस कम हो सके। सफर आपको सुरक्षित रहे इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, यानी कि अगर आपका बदन गीला है, कपड़े गीले हैं तो तुरंत बदल लें। अगर आप बारिश में भीग कर आ रहे हैं तो तुरंत नहाकर सूखे कपड़े पहने ताकि सर्दी खांसी ना हो। रेन गियर साथ रखें, यानी घर से बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट हमेशा अपने साथ रखें। गाड़ी धीरे चलाएं, यानी सड़कों पर फिसलन और जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग के कारण दुर्घटना का खतरा रहता है, इसलिए स्पीड कम रखें। और वर्क फ्रॉम होम लोगों को मिलना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में आप घर पर रहकर अपनी फैमिली के बीच में वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, पसंदीदा फिल्में देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और मनोरंजन के लिए बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। एफएम यही कहता है कि सेहत सही तो लाभ कई। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वन एंड ओनली रेडियो एफएम सुनो शारदा 90.8 एफएम, जो कि अपने ग्रेटर नोएडा का एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: स्मार्ट की सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं और 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट के सहयोग से हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं शारदा हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर सोनिशा गुप्ता मैम। मैम, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। मैम, मेरा आपसे एक बेसिक सा सवाल है कि टीबी का सबसे बड़ा लक्षण क्या है जिसकी पहचान आम आदमी भी आसानी से कर सकता है?
2: टीबी के लक्षण में सबसे पहले खास ध्यान ये रखना पड़ता है कि अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी हो जाए जो ठीक नहीं हो रही है डॉक्टर को विजिट करने के बाद, तो सबसे पहले उसको जाकर बलगम की जांच करानी चाहिए, एक्सरे कराना चाहिए, अपनी मर्जी से कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करे मतलब उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये बिगड़ सकता है
1: जी,
2: है ना। और खासकर ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी किसी को भी खांसी है या कुछ है, कोरोना ने तो हमें सिखा ही दिया है कि हमेशा उसको थोड़ा सा हाइजीन तरीके से अपने हाथ मुंह पे रखकर या कहीं पर थूकना नहीं है, बलगम वाला खांसी है
1: जी,
2: बुखार लंबे समय तक आना, भूख कम लगना, वजन कम होना, ये सारे लक्षण हैं इसके।
1: अच्छा मैम, इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ बेहतर कारगर साबित होती हैं?
2: दवाइयाँ तो इसमें कुछ अपने मर्जी से कोई बदलना नहीं होता है, इसमें फिक्स दवाइयाँ होती हैं
1: जी,
2: है ना। टीबी की फिक्स दवाइयाँ जो होती हैं वो गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं डॉट सेंटर से
1: जी,
2: वो मुफ्त में मिलती हैं मरीजों को। एक बार वो प्रूफ होता है, जीन एक्सपर्ट कराते हैं बलगम का
1: जी।
2: और बलगम के अलावा खांसी, ये तो आपकी होगी फेफड़ों की टीबी, टीबी आपकी सिर्फ अकेले लंग्स में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, वो इन्वॉल्वमेंट उसका कोई भी ऑर्गेन कर सकता है, जैसे आपके आंखों में हो सकता है, रीढ़ की हड्डी की टीबी हो सकती है, पेट की टीबी हो सकती है।
1: अच्छा मैम, इसमें रोगी का वजन लगातार गिरता है?
2: हाँ, भूख कम लगती है, वजन कम होता है उसको, और लक्षण अगर पेट के हैं तो पेट के लक्षण आएंगे, जैसे पेट की अगर दर्द हो रहा है, दस्त होना, लूज मोशन होना, उसको बार बार कभी कॉन्स्टिपेशन रहना, कभी लूज मोशन होना। अगर आँखों के हिसाब से लक्षण आएंगे, बोन टीबी है तो बोन टीबी के हिसाब से लक्षण आएंगे। दवाइयाँ तो गवर्नमेंट ने कोई रिसर्च ऑलरेडी हो चुके हैं इन सब में, कई स्टडीज़ हो रखी हैं
1: जी।
2: तो ये कोर्स आपका बनाया है 6 महीने के लिए मिनिमम जो होता है, लेकिन अगर कई बार लक्षण नहीं ठीक होते हैं, जैसे पेट की टीबी है, स्पाइन की टीबी है, बोन टीबी है, वो 6 महीने में नहीं ठीक हो सकती है। तो कुछ कुछ कंडीशंस में, कुछ कुछ जहाँ की टीबी इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पर ब्रेन की टीबी है, वो 6 महीने में नहीं ठीक होती, इट हैज़ टू एक्सटेंड टिल 9 मंथ्स और 1 ईयर, जैसे पेट की टीबी है। तो इसमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का इलाज है। अगर ये कोर्स पहले से ही अगर आप शॉर्ट कोर्स करना शुरू कर देंगे, अपने मन मुताबिक खाना शुरू कर देंगे, 6 महीने का मैं तो 2 महीने में ठीक हो गया हूँ, क्योंकि लक्षण को सबसाइड होने में, मतलब पेशेंट को जब बहुत अच्छा महसूस होता है वो 2 महीने में महसूस होने लगता है अच्छी तरीके से, वो सोचता है अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे बंद कर देना चाहिए, लेकिन यहीं पर गलती होती है, वो सोचता है मैं बंद कर दूँ अपनी मर्जी से। हमारे को पूरा कोर्स चलाना होता है, मिनिमम 6 मंथ होता है, और फिर पर्सन टू पर्सन और किस ऑर्गेन का इन्वॉल्वमेंट है उसके हिसाब से एक्सटेंशन करना पड़ता है, 9 मंथ्स टू 1 ईयर भी जाता है।
1: ठीक है मैम, MTR जांच के बारे में आप थोड़ा बताइए।
2: MDR मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है, हमारा जीन एक्सपर्ट टेस्ट कराते हैं, अगर उसमें रिफैम्पसिन रेजिस्टेंट अगर हमारा वो, दैट इज अ टेक्निक, दैट इज अ आपका इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट, तो उसमें हमारा ये बताता है सेंसिटिविटी, एक तरीके से वो दिखाता है कि जो मेन हमारी जो मेडिसिन होता है वो रिफैम्पसिन होता है ना। तो अदर ड्रग्स भी हैं, आइसोनोजाइड, पैराजिनमाइड, इथेम्बिटॉल, मैं ड्रग्स के डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, तो अगर वन ऑफ द ड्रग्स से रेजिस्टेंट है तो उसको मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, इफेक्टिवली रिफैम्पसिन, ठीक है, प्लस माइनस अदर ड्रग्स से भी रेजिस्टेंट हो सकता है। अगर टीबी की दवाइयों को बीच में छोड़ छोड़ के खाता रहेगा मरीज, अपने मन मुताबिक खाता रहेगा, तो उसको वो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस ही डेवलप हो जाएगा, जिसको असाधारण टीबी बोला जाता है एक लेमैन की भाषा में। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी कोई साइड इफेक्ट हो या कोई उसके कारण आपको लग रहा है कि हम नहीं खा पा रहे हैं, उल्टी हो रही है, नहीं पचा पा रहे हैं, कोई भी एलर्जी हो रही है, कोई भी धुंधलापन, अपनी मर्जी से बंद नहीं बैठना है, डॉक्टर के सुपरविजन में आइए, उसको ड्रग्स को मॉडिफाई करा जाएगा, उसकी टॉलरेबिलिटी बढ़ाई जाएगी। लेकिन बंद करके बैठने से अल्टीमेटली और कोर्स को इनअप्रोप्रिएट डोज और इनअप्रोप्रिएट कोर्स, मतलब जो रेजीम है 6 महीने है तो 6 महीने से ऊपर भी जा सकता है। अगर डॉक्टर के सुपरविजन में नहीं खाया, उसको कोर्स को जितना चलना चाहिए वहां तक नहीं चलाया और जो वेट वाइज जो डोज होना चाहिए वो नहीं दिया, तो अल्टीमेटली वो रेस्पॉन्ड तो करेगा नहीं एंड वो लीजन भी नहीं जाएगा, वो पेशेंट का उसका जो भी कंप्लेंट्स हैं, सिम्टम्स हैं, वो भी नहीं सबसाइड करेंगे, अल्टीमेटली इट विल लीड टू अ एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस। बेटर कि जो भी आप दवाइयाँ खाएं वो डॉक्टर के सुपरविजन में चलें, कोई साइड इफेक्ट होते हैं उनको फॉलो करें और फिर अगर आपको लगता है कि डॉक्टर को खुद मतलब समझ में आएगा कि इसको कितना 6 महीने से ऊपर एक्सटेंड करना और फिर एमडीआर हम उसको बखूबी से इसको बचा सकते हैं, मतलब इसको इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग।
1: अच्छा मैम, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो टीबी के पेशेंट के जो घर वाले लोग होते हैं उनके मन में एक भ्रांति फैल जाती है कि टीबी छूने से फैलता है
2: नहीं,
1: या टीबी संपर्क आने से फैलता है, तो इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: ट्यूबरक्लोसिस जो फैलता है वो आपके जो खांसने से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, कीटाणु जो होते हैं, उससे फैलता है ना। जो ट्यूबरक्लोसिस अगर आपका लंग्स के अलावा जो आपका बोन टीबी है, ब्रेन टीबी है, आई टीबी है, पेट की टीबी है, वो कोई नहीं फैलता है, सिर्फ जो बलगम में है आ रहा है कीटाणु जब आप वो खांस रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आपका माउथ पे मतलब हाथ रखिए, जब कोरोना के टाइम पे भी काफ़ी यही चीज़ बोला जाता है, मास्क पहने, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे से फैलता है। लेकिन जो टीबी बाहर वाली टीबी होती है, जो फेफड़ों के अंदर की नहीं है, है ना, जो छोटे से गांठ गर्दन में हो जाता है, वो भी टीबी का फोड़ा होता है, ये सारी टीबी नहीं फैलती है। लेकिन कुछ प्रिकॉशन होता है, अगर लंग्स की टीबी है तो हमें मास्क बांध के रहना चाहिए, घर वालों को भी जब भी पास में जाए तो मास्क बांध के बात करके रखें, 2 महीने में वो बलगम में जो कीड़ा होता है वो टर्न कर जाता है नेगेटिव।
1: जी
2: 2 महीने में जब हम रिपीट कराते हैं, गवर्नमेंट रिपीट कराती है टेस्ट, वो नेगेटिव टर्न कर जाता है, फिर वो नहीं फैलता है, 2 महीने के बाद थोड़ा सा सेफ हो जाता है। लेकिन इसमें छुआछूत नहीं होना चाहिए और घर में अगर किसी को टीबी है तो घर के जितने भी लोग हैं हम सबको स्क्रीन आउट करना ज़रूरी होता है, खास करके फेफड़ों की अगर टीबी है एक्सरे कराना ज़रूरी है ताकि सबके बाकी लोगों को भी ना फैलाओ। लेकिन इसमें छुआछूत जैसी कोई चीज़ नहीं,
1: कोई चीज़ नहीं। अच्छा, इनका टीबी के एक पेशेंट की जीवन शैली क्या होनी चाहिए, उसके आहार में क्या क्या शामिल होना चाहिए जो उसको ठीक से रिकवरी करने में मदद करे?
2: गवर्नमेंट ने निक्षा और उस पर काफ़ी अच्छा उन्होंने स्टार्ट करा हुआ है ना, पोषण दिया हुआ है, हर घर में वो जो पोषण होती है वो थैली होती है दे सप्लाई घर में जाकर, और अच्छा न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कई जगह पर, जैसे सिलीनियम आपका, मैग्नीशियम, कॉपर, जितने भी आपके न्यूट्रिशंस हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस जितने भी हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी होते हैं, जितने भी आपके ये थोड़ा सा कम होते हैं अगर बॉडी में, तो इम्यूनिटी डेफिनेटली कम हो जाती है। अगर इम्यूनिटी कम होगी, जो आपकी ताकत शरीर से जो लड़ने की है, सेल्फ जो इम्यूनिटी होती है, दवाई का एक अलग रोल है, लेकिन फिर वो आपको डेफिनेटली वो कम हो पाएगा। अगर आपका ये न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसका फास्ट रिकवर करेंगे, खासकर अगर पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस के साथ साथ डायबिटीज़ भी अगर है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो ट्यूबरक्लोसिस आपका ठीक होने में समय लगता है। तो इसलिए डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो टीबी नहीं ठीक होने देगा, टीबी शुगर को नहीं ठीक होने देगा, दोनों का रोल है। तो इसलिए कोई भी चीज़ अगर है, न्यूट्रिशन अगर कमी है और अगर वो डायबिटिक है, तो हर चीज़ को कंट्रोल करना साथ में ज़रूरी होता है, तब इसका बहुत अच्छी तरीके से बखूबी से अच्छी तरीके से पेशेंट का रिस्पॉन्स भी आता है और बहुत स्मूथली वो 6 महीने का कोर्स भी कर लेता है, कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं आते हैं।
1: ठीक है मैम, जैसा कि आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM स्मार्ट के सहयोग से जो हमारी मुहिम है टीवी हारेगा देश जीतेगा, आप टीवी के पेशेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
2: टीवी के मरीजों को ये मैसेज देना चाहिए कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, टीवी के बैक्टीरिया को डरने की जरूरत होनी चाहिए
1: जी,
2: कि अब हमारा रोल खत्म। तो जब आप हिम्मत करेंगे तो अपने आप ही सब चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी, इरेडिकेट करना हो जाएगा, यही हमारा मुहिम है कि वो एलिमिनेट हो जाए।
1: ठीक है मैम, अपना कीमती समय देने के लिए
2: धन्यवाद,
1: शुक्रिया,
2: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुनीशा गुप्ता प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन शारदा हॉस्पिटल से। इस चर्चा में हमें सहयोग कर रही थी दीपाली। टीबी का ये विशेष कार्यक्रम टीबी हारेगा देश जीतेगा। भारत सरकार का उद्देश्य यही है कि 2025 तक टीबी मुक्त हमें भारत को बनाना है। आइए इस मुहिम में हम सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना। इसी संदर्भ में ये विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं उन टीबी पेशेंट के बारे में जो डॉट सेंटर पहुंच रहे हैं शारदा अस्पताल में। इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं हमारे वॉलंटियर। तो सबसे पहले सुनते हैं अपर्णा को।
4: तो आप टीबी की बीमारी से कब से ग्रसित हैं?
5: टीबी की बीमारी में मतलब खांसी करते थे ना तो सीने में दर्द हो रहा था।
4: कब से आपको पता चला कि
5: हो गया? एक हफ्ता।
4: तो आप एक हफ्ते से यहाँ एडमिट हैं हॉस्पिटल में? एक हफ्ता हो गया आपका?
5: एक हफ्ता 12 दिन।
4: अच्छा, और आपका जो इलाज चल रहा है उससे आपको कितना मतलब आप कितने स्वस्थ हुए हैं?
5: बहुत हो गया।
4: पहले से आप बेहतर हुए?
5: हाँ।
4: और आप क्या बताना चाहेंगे मतलब कैसा लग रहा है, मतलब क्या चेंज आ रहा है आप में?
5: सब कुछ अच्छा लग रहा है।
6: आप साफ सफाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
5: सब कुछ अच्छा, साफ सफाई, खाना पीना।
6: नहीं, अपने स्वास्थ्य के बारे में। कोई और भी अगर हो जिसको यही समस्या हो तो उसको क्या करना चाहिए अभी उसके लिए?
5: साफ सफाई रहना।
6: और परिवार और आस पड़ोस का सहयोग आपको मिल रहा है?
5: हाँ।
6: ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम?
5: परवेज आलम।
6: ओके, थैंक यू थैंक यू। सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
7: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 FM से मैं शशि कपूर और आज हम शारदा हॉस्पिटल के डॉट सेंटर में आए हुए हैं। सबसे पहले सर आपको नमस्कार।
8: नमस्कार, नमस्कार सर।
7: सर हमारे जो भी सुनने वाले हैं सबसे पहले तो हम आपको आपका परिचय जानना चाहेंगे।
8: जी, मेरा नाम दीपक कौशिक है और एज ए मैं डॉट सुपरवाइजर यहाँ वर्क करता हूँ और यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से हम लोग यहाँ आते हैं समय समय पर।
7: बिल्कुल सर, और ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप यहाँ पर गवर्नमेंट का काम देखते हैं तो कितने मरीज टीबी के यहाँ पर रोज आते हैं उसके बारे में कुछ आप आंकड़े हो तो
8: बताएं। पर डे जो टीबी के मरीज आते हैं, जो बात करें तो टू टाइप्स में, इन्वेस्टिगेशंस एंड क्या कह रहे ट्रीटमेंट।
7: जी,
8: इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो 8 से 10 पेशेंट जो है पर डे हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस के लिए आ जाते हैं और ट्रीटमेंट की हम बात करें तो 2-4 पेशेंट जो है, 2 से 3 पेशेंट पर डे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होता है जिसको नोटिफाई करते हैं हम लोग।
7: सर एक और बात यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो भी मरीज आपके यहाँ पे आते हैं कि जो भी जिनका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ है तो ऐसे कितने मरीज हैं जो यहाँ पर ट्रीटमेंट करा के इलाज करा के अब टीबी को उन्होंने हरा दिया है और एक स्वस्थ जीवन वो जी रहे हैं।
8: अगर हम बेसिकली बात करें तो अभी हमारे पास रिसेंट में 80 पेशेंट अभी हमारे पास चल रहे हैं जिसमें से काफ़ी पेशेंट जो अभी अगर 2011 से, क्योंकि हमने डॉट सेंटर स्टार्ट किया था शारदा में और 2011 से लगभग हमने कई हजार पेशेंट यहाँ से ठीक करके वो अब स्वस्थ हो चुके हैं जिन्होंने टीबी को हराया है और टीबी चैंपियन भी बने हैं।
7: बिल्कुल, इसी के साथ आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगा कि सरकार की एक योजना भी है जो टीबी पेशेंट है खासकर उनके लिए, तो कौन सी वो योजना है और किस तरह से जो टीबी के पेशेंट है उसका लाभ ले सकते हैं?
8: जी, सरकार ने टीबी के मरीजों को मुफ्त तो दवाइयां दे ही रखी हैं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन बनाया है कि 2025 तक हमको टीबी फ्री इंडिया करना है, जबकि वर्ल्ड का जो है लक्ष्य जो है वो 2030 है, बट हमारे माननीय मोदी जी ने 2025 तक इसको विजन बनाया हुआ है कि इसको हमें टीबी फ्री करना है। उसी के लिए टीबी फ्री करने के लिए पेशेंटों को कुछ सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जैसे कि एक निक्षय पोषण योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत सरकार मानती है कि पेशेंट को हम दवाइयां तो खिला ही रहे हैं लेकिन उन पर पोषण की सामग्री नहीं हो पाती है, खान पीन के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए एक निक्षय पोषण योजना के तहत सरकार DBT के माध्यम से उन मरीजों के खाते में 1,000 रुपये पर मंथ अब फिलहाल दे रही है। पहले ये 500 रुपये थे लेकिन उसको आपके दुगना कर दिया है तो 1,000 रुपये पर मंथ देती है जब तक दवाई खाते हैं हमारे।
7: बहुत ही अच्छी योजना है। आखिर में सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से हमारे जो भी सुनने वाले हैं उनके लिए क्या कहना आप चाहेंगे?
8: मैं ये कहना चाहूंगा आपके पास अगर कोई भी ये 5 लक्षणों वाला व्यक्ति जो मैं बता रहा हूं, 2 हफ्ते से अगर किसी को ज्यादा खांसी है उसको आप चिन्हित करें, किसी को मंदा मंदा बुखार लो ग्रेड फीवर आता है उसको आप चिन्हित करें, किसी का वजन अचानक से कम हो जाता है उसको आप चिन्हित करें और किसी को रात में कमर पर ज्यादा पसीने आते हैं उसको आप चिन्हित करें, और बलगम में किसी को खून आता है उसको चिन्हित करें। अगर ऐसा कोई भी सस्पेक्ट आपको दिखाई देता है तो उसको आपको बोलना है कि नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना ट्रीटमेंट और अपनी इन्वेस्टिगेशन कराएं।
7: बहुत बहुत शुक्रिया सर, सुनो शारदा 90.8 एफएम से बात करने के लिए,
8: और बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर दीपक कौशिक डॉट सेंटर शारदा अस्पताल से। इस चर्चा में हमें सहयोग कर रहे थे शशि। हम आशा करते हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उनको ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं श्रृंखला में और हम सुनते हैं टीबी पेशेंट को शारदा अस्पताल से, जो कि डॉट सेंटर शारदा अस्पताल में पहुंच रहे हैं और इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं हमारे वॉलंटियर श्रेयसी।
9: मैम आपका नाम क्या है?
10: राकेश।
9: और आपको क्या समस्या है?
10: मेरे को यहाँ पे गांठ है गर्दन में, तो उसी में दर्द होता है, उसकी वजह से पूरे शरीर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं और आँखों के आगे अंधेरा रहता है, बिल्कुल आँखें बंद रहती है और सर में दर्द रहता है।
9: आपको क्या टीबी की बीमारी है?
10: हाँ
9: मैम टीबी। कितने समय से है?
10: अभी अभी हुई है, मुझे तो पता भी नहीं था, यहीं पे आके पता चला है।
9: अच्छा, तो आप कहाँ से? शारदा यूनिवर्सिटी से अपना इलाज करवा रही
10: हैं? हाँ यहीं से, शारदा से।
9: तो किस तरह की दवाइयाँ आपको दी जा रही हैं?
10: अभी तो आज ही शुरू करी है दवाई तो।
9: और घर पे आप कैसे मेंटेन करिए कि आपको जैसे टीबी हुआ है तो आपके घर के दूसरे लोगों पे ये ना फैले, उसके लिए क्या कर रहे हैं?
10: बोला कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो फैलने वाली नहीं है, बस मास्क लगा के,
9: मास्क और साफ सफाई का ध्यान जितना भी। ये तो पता ही होगा कि टीबी कोई जानलेवा बीमारी आज के समय में रह नहीं गई है, उसका इलाज हो सकता
10: है। इलाज है हाँ, हमारे पड़ोस में भी थी एक लड़की को, मेरी तो कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल चारपाई में पड़ी हुई थी, वो बिल्कुल ठीक है, आज ऐसी मोटी है, बहुत मोटी।
9: अच्छा, तो आशा करते हैं कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम से मैं हूँ दीपाली, और आज हम स्मार्ट के साथ मिलकर एक मुहिम चला रहे हैं, टीवी हारेगा देश जीतेगा। मेरे साथ हैं डॉक्टर रुक्मणी जी। ये BCG का जो टीका है इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी नहीं है, आप इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दीजिए।
11: ये जो टीबी का टीका है ये टीबी से प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है और ये हमारे लेफ्ट साइड के आर्म पे लगाते हैं, जिसके बाद कुछ दो तीन दिनों में वो फूल भी जाता है और वो टीका फिर पिघल भी जाता है, लेकिन उससे यही है कि प्रोटेक्शन है बच्चे को, करीब 15 साल तक उसको टीबी से प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि जो टीका है वैक्सीन, ये वैक्सीन लगाने से हमारे बॉडी में उस टीबी के जो बैक्टीरिया है उसके लिए इम्यूनिटी बनती है, ताकि अगर कभी हमारा टीबी से एक्सपोजर हो तो फिर वो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए इम्यूनिटी जो चाहिए वो इस टीके से हमें मिल जाएगी।
1: ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया मैम।
11: थैंक यू।
3: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रुक्मिणी जी को रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट शारदा अस्पताल से। इसमें हमें सहयोग कर रही थी हमारी सहयोगी दीपाली। सवाल बहुत अच्छा था, टीबी अगर किसी को हो जाता है तो वैक्सीनेशन यानी कि जो टीका है BCG, इसके संबंध में बातें हुई। आशा करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। बस उम्मीद करते हैं कि लापरवाही न बरतें, समय से अपना इलाज जरूर करवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डॉट सेंटर में आए हुए मरीजों से बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी शशि।
7: सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा।
12: ललिता।
7: ललिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने दिन हो गए आपको दवा लेते हुए यहाँ से?
12: एक दो वीक हो गए हैं। जब से
7: दो वीक हो गए आपके यहाँ से, तो दवा आप नियमित रूप से खाती हैं?
12: जी।
7: और सरकार की कोई भी योजना जैसे टीबी से रिलेटेड है उसका लाभ मिल रहा है आपको?
12: जी हाँ।
7: तो कैसा लाभ मिलता है उसमें?
12: दवाइयाँ वगैरह फ्री मिलती हैं और सेहत के लिए भी कुछ खाने पीने के भी पैसे मिलते हैं।
7: तो ये टीबी की जो दवा आप खाती हैं तो कितनों दिनों की दवा मिलती है एक टाइम में यहाँ पर जब आती हैं आप?
12: तो फिलहाल एक एक वीक के ही दे रहे हैं।
7: 1 वीक के लिए दवा मिलती है आपको? तो ये दवा की जो डोज है आप सुबह शाम की होती है एक टाइम की होती है?
12: नहीं, एक ही टाइम की
7: होती है। एक ही टाइम दवा खाती हैं। तो जब से आप दवा खा रही हैं टीबी की तो अपने आप को कुछ स्वस्थ महसूस कर रही हैं?
12: जी हाँ।
7: कितना फायदा हो रहा है?
12: पहले से तो बहुत फायदा है।
3: फायदा जरूर होगा जब आप नियमित तौर पर दवा लेंगे। ये बात हम कर रहे थे टीबी पेशेंट के विषय में, और खास बात ये रही कि टीबी पेशेंट अब निडर होकर बात करते हैं क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। इसलिए लापरवाही ना बरतें, अपना इलाज समय पर जरूर करवाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीबी के दूसरे पेशेंट से। जी हाँ, उनकी मन की बात जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर की बातें तो हमने आपको सुनाई और आगे भी सुनाएंगे, किस तरीके से वो अपनी दवा ले रहे हैं, कैसे वो अपने आप को अनुशासित रख पाते हैं, ये सारी बातें लगातार हो रही हैं। आइए आगे चलते हैं और सुनते हैं श्रेयसी टीबी पेशेंट से क्या बात कर रही हैं।
13: सर आपका नाम क्या है?
14: निखिल तिवारी।
13: और आपको क्या बीमारी है?
14: मुझे टीबी का प्रॉब्लम है, अभी स्टार्टिंग ही हुई है मेरी इसमें।
13: कब आपको पता चला, कैसे पता चला आपको कि आपको टीबी है?
14: हाँ, नॉर्मली क्या है, मेरे गले में गांठ हुई तो मैंने उसका जस्ट चेकअप कराया, FNAC कराया, तो उसमें कंफर्म हुआ कि अभी आपको टीबी स्टार्ट हो रहा है, तो आप nearby.center में जाके उसका इलाज करा सकते हैं।
13: और आपकी दवाई और इलाज कैसे चल रहा है?
14: अभी तो फिलहाल अच्छा चल रहा है और बोला है कि 6 मंथ का कोर्स है, आप 6 मंथ में ठीक हो जाएंगे।
13: और आप कहाँ से इलाज करवा रहे हैं?
14: इलाज तो मेरा यहीं से ही चल रहा है, शारदा यूनिवर्सिटी से, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मुझे रेफर किया गया था, उन्होंने बोला आपके nearby.center यही है तो वहाँ पर जाइए।
13: अच्छा, तो और आपको क्या लगता है, आप जो बाकी लोग हैं उनको टीबी के बारे में क्या बताना चाहेंगे?
14: नॉर्मली क्या है कि ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं होती है, जैसे कि लोग मतलब बहुत ज़्यादा इसको लेके गलत वे में लेके चले जाते हैं कि टीबी है तो ठीक नहीं होगा, मतलब या तो आप ना रियल जैसे आपको स्टार्टिंग में ही अगर आप ध्यान दे लेंगे तो आपका इलाज फिर भी ठीक से हो जाएगा, अदरवाइज तो जितना लेट करेंगे आप किसी भी बीमारी के लिए करेंगे तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी।
13: शुक्रिया, आशा करते हैं कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएं। सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
15: अम्मा जी नमस्ते।
16: नमस्ते।
15: क्या नाम है अम्मा जी आपका?
16: सुनीता।
15: तो आप टीबी की जो दवा खा रही हैं, कब से खा रही हैं?
16: मैं तो पुराने समय से खा रही थी, 20 साल तो हो गई मुझे, पर मैं ठीक हो गई थी उसके बाद।
15: तो आप एक बार ठीक हो गई, फिर
16: खांसी हल्की हल्की सी खांसी रही आती है, वो जाती नहीं है, तो इस वजह से फिर दोबारा से मुझे कुछ ऐसा लगा महसूस सब ये दर्द सा हुआ कि चलो भैया मैं दिखा करती हूँ, ब्लड आया थोड़ा थोड़ा सा
15: जी,
16: तो एक्सरे कराया।
15: तो आज आप पहली बार आई हैं यहाँ पर के इससे पहले भी आ चुकी हैं?
16: पहली बार आई हैं।
15: तो इससे पहले आप दवा खाती रहती थी कि दवा छोड़ दी थी आपने खाना?
16: दवा तो मैंने जब पूरा हो गया, कोर्स पूरा हो गया था जब छोड़ी थी।
15: तो फिर से आपको टीबी के लक्षण फिर से आपको आ गए हैं?
16: अच्छा।
17: हाँ, नहीं वो आपसे पूछ रहे हैं।
18: आए नहीं है। हाँ। नॉर्मली धब्बे रहते हैं,
16: पुराने धब्बे दिखाई दे रहे हैं ये तो एक्सरे में तो जी।
17: अब इनके बच्चे हैं, बेटे हैं
16: जी। हाँ जी।
17: कैसे ध्यान रखते हैं आप मरीज का?
18: मैं हर तरीके से मतलब पहले कि किस क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये सारी चीजें मैं इन चीज का रखता हूँ कि तली भुनी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, ये सारी चीजें, और फल वगैरह खा लेने चाहिए, और ज्यादा गर्म चीज नहीं खानी चाहिए टीबी के मरीज को, ये भी बताया जाता है नॉर्मली।
15: आपके परिवार में और भी सदस्य होंगे तो अम्मा के प्रति सबका व्यवहार कैसा रहता है?
18: अम्मा के प्रति सबका व्यवहार हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, जहाँ तक देखते हैं कि हम ज़्यादातर अपने माता पिता को यही हमारे सब कुछ है, इनको ही लेकर के हम हमेशा अवेयरनेस रहते हैं, इनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे।
17: बहुत अच्छा। देखिए ये अम्मा जी, मैं इनसे बात करना चाह रहा था, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, हम समाज को जगाने के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपका संदेश पहुंचा रहे हैं। लोग मरीज को छोड़ देते हैं जिसको ये बीमारी हो जाती है, जैसे कि हमने सुना भी है, और भैया ने बहुत अच्छी बात की कि
16: मेरे बेटा तो भैया बहुत अच्छे, मेरे बालक बहुत बढ़िया, बेटा मुझे तो हर समय पे दवाई देते हैं और टाइम से पहले दिखाते हैं।
17: अच्छा, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी जो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं मरीज के साथ, उसको तन्हा छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं?
16: देखो ना, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, माँ बाप तो देखो एक बहुत ही होते हैं अपनी औलाद की, यही बस तक।
17: बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप स्वस्थ हो जाएंगे, बस आप दवा टाइम से लेते रहेगा।
16: ठीक है भाई।
3: आपने हमसे वादा किया है तो हम आप श्रोताओं से भी वादा लेते हैं कि दवा टाइम पर जरूर लीजिएगा। कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो बस हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। टीबी से बचाव का उपाय यही है, 2 हफ्तों से ज्यादा अगर आपको लगातार खांसी हो रही है तो तुरंत एक्सपर्ट की राय लीजिए, और जैसा डॉक्टर कहें वैसा करेगा। फिलहाल इन अम्मा को जब हमने सुना तो बहुत सीधी सच्ची हमें लगी, हमने उनसे पूछा कि क्या आपको टीबी है? हैं, मुझे टीबी है? फिर हमने बात को कहा कि हम आपसे पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बताया, उनके साथ आए हुए बेटे ने बताया कि नहीं, इनको टीबी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, लेकिन हाँ वक्त रहते हुए उस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है, बशर्ते आप दवा लगातार लेते रहें। तो बस कहने का आशय यही है कि चाहे वो चेस्ट में धब्बे की बात हो या अगर आप टीबी पेशेंट हो तो आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं श्रेयसी को।
19: जी नमस्कार, आपका क्या नाम है?
20: कोमल।
19: तो कोमल जी, आप किस बीमारी से ग्रसित हैं?
20: टीबी से।
19: कितने समय से आपको टीबी है? दो महीने से। तो आपको कैसे पता चला कि आपको टीबी है? आपको क्या लक्षण दिखाई दिए और आप कैसे डॉक्टर के पास आई जांच के लिए?
4: खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा था।
19: और मतलब क्या क्या दिक्कतें आपको हुई?
4: सीने में दर्द हो रहा था और बुखार हो रहा था बस।
19: अच्छा, तो आपकी 2 महीने से जो दवाइयाँ चल रही है, आपको क्या लगता है वो असरदार

0: 2 महीने से दवाई नहीं चल रहा था, इस समय दवाई स्टार्ट हुआ है।
1: तो आपको क्या लगता है कि टीबी कैसी बीमारी है, वो ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती है?
0: हो सकता है,
1: हो सकती है।
2: तो हम भी आशा करेंगे कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएं। और आप बाकी लोगों को टीबी के बारे में क्या बताना चाहेंगी?
0: टेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक हो सकता है।
2: साफ़ सफाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
0: ज़्यादातर करना चाहिए साफ़ सफाई। इसमें
2: आप जैसे सुन रही होंगी, कई लोगों में ये भ्रम होता है कि टीबी एक दूसरे को छुआछूत की बीमारी है, तो ऐसा कुछ तो नहीं आपके परिवार में, आपके आसपास के लोगों में?
0: ऐसा तो है, छुआछूत तो होता है।
2: नहीं, पर टीबी छुआछूत की बीमारी नहीं है, वो बस साफ़ सफाई आपको रखनी होती है और जूठा खाना। जैसे आपको टीबी अगर, तो बाकी लोग आपका बस जूठा खाना ना खाएं, वरना वो छूने से नहीं फैलती। टीबी इस तरह की बीमारी है। धन्यवाद, सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 FM से मैं हूँ शशि कपूर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का,

आ रहे हैं, हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में।

सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके हैं 10:44 हो चुके हैं, 3 तारीख है। हमारे आसपास क्या खास है? खास बात यह कि शारदा विश्वविद्यालय के आंगन में आज चिराग पासवान जी आ रहे हैं। स्टूडेंट से मुलाकातें होंगे, स्टूडेंट से बातें होंगी, बहुत कुछ खास होगा। ये सब जानने के लिए, सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड ऑल योर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। थैंक यू।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।
2: मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया?
3: जी क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाए?
1: सुनो शारदा 90.8 FM पर ऐसी अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।
3: बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है, याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
3: कल नहीं, अभी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: Bingo on Malaysia card, the end. दिमागी बुखार का दी एंड। ये
1: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
0: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह।

0: अक्षरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
1: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: है किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम दें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवार जनों के मन में डर और सवाल रहते ही रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से लोग उलझन में हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं, और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? अब जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जानते हैं इसका जवाब। जी हाँ बिल्कुल, HPV टीका सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो इस सवाल का जवाब है, गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर कोई चिंता हो तो आशा बहन जी, ANM बहन जी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बात करें। अब आता है सवाल नंबर 4, ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका जवाब है, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए ये टीका लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं? तो इसका जवाब है, हर बात सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की, जो कि आखिरी सवाल है, टीका कब और कहां लगेगा? तो इसका जवाब है, इसके लिए अपनी आशा बहन जी, ANM बहन जी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। वो ही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि आप तक सही सही जानकारी पहुंचे और उस जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपनी खेती को उन्नत बनाएं और जो आपकी आमदनी है वो दुगनी चौगनी हो। इसीलिए सरकार आपके लिए कल्याणकारी योजनाएं लेके आती है, बहुत सी योजनाओं का आप लाभ भी ले रहे होंगे। लेकिन किसान मित्रों, आप अधिक आमदनी चाहते हैं तो आपको खेती के अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा। जी हाँ, किसान भाइयों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान भाई खेती के साथ ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसी क्रम में सरकार की ओर से किसान भाइयों को मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि आप मधुमक्खी पालन का व्यवसाय ठीक से कर सकें और फिर आपकी अच्छी खासी आमदनी भी होती रहे। तो हमारे जो भी किसान भाई खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा खासा पैसा वो कमा सकते हैं मधुमक्खी पालन करके। किसान मित्रों, आपको बता दें कि सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन को मीठी क्रांति के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे जो किसान भाई हैं वो स्वरोजगार खोल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसका प्रयोग आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को अधिक बढ़ा सकते हैं और इसे ऊंचे स्तर तक ले जा सकते हैं। अब बात आती है कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत कैसे की जाए, तो ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं एक रागनी। कलाकार है प्रियंका चौधरी और किस्सा रहेगा कृष्ण सुदामा का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

सोचने लग जाते हैं, कोई बात नहीं अगर कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया। एक विचार बना लिया कि घर वापस नहीं जाऊंगा, समा

0: तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से कृष्ण सुदामा के खिस्से से ये रागनी। और आज हम बात कर रहे हैं खेत खलियान कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन की। बहुत सी बातें आपने मधुमक्खी पालन के बारे में सुनी, अब बात निकल के ये आती है कि इस काम की शुरुआत खेती के साथ साथ हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही दिमाग में बात आती है कि काम की शुरुआत तो करें, लेकिन इसमें कितना खर्चा होगा, कितना पैसा लगेगा। तो इसके लिए सरकार की जो ऋण योजना चल रही है उसके बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। यदि बात की जाए मधुमक्खी पालन पर आने वाले खर्चे की, यदि आप शुरू में 10 पेटी से मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहते हैं तो इसमें करीब 35,000 से 40,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ने लगेगी, आपका मुनाफा भी बढ़ने लगेगा। आगे आपको सिर्फ मधुमक्खियों के लिए पेटियों की संख्या बढ़ानी होगी। इस तरह आप शुरुआती कुछ पैसा खर्च करके इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अब आपको ये पता चल ही गया कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। 10-15 पेटी से इसकी शुरुआत की जा सकती है और जो खर्चा होता है शुरुआत में वो 35,000 से 40,000 के बीच में होता है। अब आपको बता दें कि सरकार की ऋण योजना भी चल रही है, तो उस योजना का लाभ उठा करके भी आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन काम की शुरुआत कैसे करें? कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो उसकी जानकारी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अब ये जानकारी, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कहां से ली जाए? तो इसका सीधा रास्ता ये है कि आप अपने नजदीकी, जैसा कि हम हर कार्यक्रम में आपको बताते हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि केंद्र हैं, वहां जाकर के जो भी वैज्ञानिक हैं उनसे बात करिएगा कि मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण आपके यहाँ पर कब कब दिया जाता है और कैसे हम इसमें भाग ले सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे। और भी बहुत सारी जानकारी इस व्यवसाय से जुड़ी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मधुमक्खी पालन व्यवसाय की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। किस्सा रहेगा हरिश्चंद्र तारामती का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।
1: मेरा घड़ा तो थमा दे प्यारी। अच्छा।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे हरिश्चंद्र तारामती के किस्से से ये रागनी। कलाकार थे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। किसान मित्रों, खेती में पानी की खपत को कम करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। आपको पता ही है कि जल का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी कि जल का संकट बढ़ रहा है और किसानों के लिए कम पानी में अधिक खेती करना एक चुनौती बन चुका है। सही तकनीक और उपकरणों के इस्तेमाल से, जैसे एग्रीकल्चर स्प्रेयर मशीन, इससे हमारे किसान भाई अपनी खेती में पानी की बचत कर सकते हैं और अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। लेकिन आजकल आधुनिक तकनीकों के उपयोग से हमारे किसान मित्र कम पानी में ज्यादा फसल उगा सकते हैं। पानी बचाने के लिए भी किसानों को आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। हमें समय के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना ही होगा। तो किसान मित्रों, आज के समय में जो सिंचाई की आधुनिक तकनीकी हैं, उनमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है और खेतों की सिंचाई की जा सकती है। इसके अलावा बारिश के पानी का संचयन करके सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। मल्चिंग तकनीक अपनाने से मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे सिंचाई की जरूरत कम हो जाती है। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही आधुनिक तकनीकों की, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं, साथ ही साथ पानी की बचत कर सकते हैं और अपना पैसा भी बचा सकते हैं। और अब किसान मित्रों, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं बलराम बैसला और खस्सा रहेगा द्रौपदी चीर हरण।

बलराम बैसला द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

प्रेमी साथियों बहुत खुशामद की निर्भाग उर्मिला ने, लेकिन उन कमबख्त नीरज के माँ और बाप के दिल में

आग जलनी शुरू हो गई और उर्मिला ने शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। मेहरबानों, जिसका दुनिया में कोई साथी नहीं होता, उसका परमपिता परमात्मा हिमाती बन के आता है। उर्मिला की आवाज पड़ोसी पड़ोसी ने सुन लिया। दिन का पहर था, लोग इकट्ठे हो गए। उसकी जिंदगी थी, हाथों को तोड़ दिया और उर्मिला को जिंदा बचा लिया। मेहरबानों, गांव के लोगों ने

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है।

0: उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबर

ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसें, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना सचिन कपूर। आपके लिए लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है जो कि स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना तथा उन्हें सशक्त करना है ताकि वे इससे मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सके। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: दरवाजा खोल। अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलती हो? अरे कहां मरी है? दरवाजा खोल। दरवाजा नहीं खोल सकती हा? मुझे 10 मिनट हो गए हैं बाहर खड़े हुए। क्या कर रही थी तब से? पता नहीं क्या क्या करती रहती है अंदर बैठकर। हटो यहां से। अरे अब कुछ खाने को भी देगी कि मुंह ही ताकती रहेगी मेरा? तुझे तेरी माँ ने सिखाया नहीं है बाहर से आए इंसान को रोटी पानी देना होता है? पता नहीं कहां से मेरे नसीब में लिखी हुई है मनहूस जैसी। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ भाई कैसे हो?
1: बस ठीक हूँ यार, तू बता।
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, ठीक चल रहा है सब।
1: बढ़िया बढ़िया, तू सुना भाभी कैसी है?
0: अरे यार नाम किसका ले दिया तूने, उसका क्या होगा? ठीक है वो भी, बस मेरी जिंदगी उसने नरक बना के रखी हुई है, मनहूस जैसी औरत।
1: भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया?
0: ओ कुछ नहीं यार, जब से शादी हुई है ना मेरी जिंदगी तो नरक ही बन गई है। मुझे लगता है मेरी जिंदगी टोटल ही बर्बाद हो गई है, मैंने तो जैसे आफत ही गले लगा ली हो। इतनी मनहूस है ना भाई, क्या बताऊं? जब से मेरी जिंदगी में आई है हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी है, कभी चैन से नहीं रह पाया हूँ मैं जब से उससे शादी की है। और भाई इसका बाप कहता है कि हमारी लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बड़ी ज्यादा संस्कारी है। अरे मुम्मा संस्कारी है, है? क्या सुंदर का क्या करूं मैं, किसी काम के जोगे नहीं है भाई, कोई काम नहीं करी राजी। और सुनो मेरी बात भाई आप।
1: जी भाई। और
0: भाई बाप ने उसके मुझे गाड़ी तक तो दी नहीं, एक टूटी फूटी सी बाइक दे दी है, है? मैंने सोचा था कि गाड़ी होगी मेरी भी टोर होगी, है मैं भी टोर से आया जाया करूंगा, टूटी सी बाइक उसके बाप ने मेरे मथे मर दी है। ओ अरे क्या तोड़ दिया बिने, रुक मैं बाद में कॉल करता हूँ, पता नहीं इस मनहूस ने अब क्या तोड़ दिया मेरा। करता हूँ बिने, बाद में फोन करता हूँ, ठीक है बाय बाय बाय। तेरे बाप ने दिया था ये? हाथ टूटे हैं तेरे जो ढंग से तुझसे उठाया नहीं जाता, जब देखो तब नुकसान करती रहती है। अरे यार बड़ी अजीबोगरीब औरत है तू। हाँ
2: मैं उठाती हूँ, अभी उठाती हूँ।
0: अरे जुबान मत खोल मेरे सामने, समझी? ना अकल है तुझमें, ना ही तू सुंदर है। और सुन अगर ज्यादा बोली ना तो तेरी सांस तक बंद कर दूंगा, दिमाग खराब करके रखती है सुबह शाम बस मेरा।

0: हेलो माँ, माँ मुझे ले जाओ यहाँ से, मुझे बहुत पीटते हैं ये, मैं यहाँ नहीं रह सकती। हाँ प्लीज प्लीज पापा को कहकर मुझे यहाँ से ले जाओ ना, प्लीज प्लीज माँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे बहुत पीटते हैं ये, मैं नहीं रह सकती माँ, प्लीज प्लीज आप पापा को बोलिए कि मुझे यहाँ से ले जाए, प्लीज।
1: चुगली कर रही थी मेरी, हाँ मेरी चुगली कर रही थी। रुक मैं बताता हूँ चुगली कैसे होती है, देख अब देख तू कौन बचाता है तुझे, आज कौन बचाता है तुझे। इधर आ तू, इधर आ, हैं इधर बकवास करती है मेरे आगे, हैं इधर ही रखूंगा तुझे मैं और ऐसे ही पीटूंगा तुझे मैं, देखता हूँ तुझे कौन बचाता है, कौन बचाता है तुझे, बकवास करती है मेरे आगे, हैं।
0: भगवान मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, ये इंसान मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। हे भगवान कैसा पति दिया है मुझे, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, ये मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो।

नमस्कार श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो गुंजन धर्मशाला है और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त मीना। तो श्रोताओं, अगर कोई भी महिला घरेलू हिंसा से परेशान है तो वो कॉल करें 7018117091 पर। रेडियो गुंजन अपना फैमिली काउंसलिंग सेंटर चला रहा है जहाँ महिलाओं के ऊपर हो रही हिंसा के विरुद्ध कदम उठाए जा रहे हैं। श्रोताओं, हिंसा एक कानूनी अपराध है, आपको आगे आकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है। अगर आपके साथ कोई हिंसा हो रही है तो आप भी कॉल कर सकते हैं रेडियो गुंजन के हेल्पलाइन नंबर पर, नंबर रहेगा 7018117091।

0: माया, ओ माया, माया दरवाजा खोल, देख कोई आया है बाहर।
1: हाँ जी, मैं अभी देखती हूँ।
2: मैडम, आपका नाम माया है?
1: जी इंस्पेक्टर साहब, मैं ही माया हूँ।
2: आपने कंप्लेंट की थी?
1: जी, मैंने ही कंप्लेंट की है।
0: ओ, कौन है? बताती क्यों नहीं, कब से खड़ी है दरवाजे के पास? कौन है, कौन आया, बता जल्दी।
2: हाँ जी, तो यही है आपके पति?
1: जी इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे पति।
0: हाँ जी, हाँ जी, बताओ जी, बताओ, मैं ही हूँ इसका पति, क्या हुआ बताओ।
2: तुम्हारे खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट की है, इन्होंने रेडियो गुंजन के थ्रू कंप्लेंट की है।
0: मेरे खिलाफ? लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमारा तो बहुत प्यार है आपस में। बोलो माया, बोलो ना माया, हमारा तो इतना प्यार है इंस्पेक्टर साहब कि क्या बताएं आपको, हम तो एक दूसरे के बिना रोटी नहीं खाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ ही रहे
2: बस,
0: हो ना।
2: बस, मुझे लग ही रहा है इनका चेहरा देखकर।
1: इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें यहाँ से, ये मुझे बहुत मारते पीटते हैं, मैं इनके साथ नहीं रह सकती।
2: अरे तू चुप कर, मुझे पहले लग गया था पता इनका चेहरा देखकर कि कितना प्यार करता तू। माया, घबराओ मत, तुम बताओ मुझे सच सच, क्या माजरा है?
1: इंस्पेक्टर साहब, ये रोज रोज आते हैं और मुझे पीटते हैं, छोटी छोटी बात को लेके हाथ उठाते हैं, मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती, अगर मैं और इनके साथ रहूंगी तो ये मुझे मार डालेंगे, मैं अपने होने वाले बच्चे पे भी इसका असर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ, मुझे बचा लीजिए, आप इन्हें यहाँ से ले जाइए।
2: चलिए आप, चलिए चलिए मेरे साथ, चलिए आप पुलिस स्टेशन मेरे साथ, चलिए, चल चल चल चल।
0: सर, हमारा आपसी मसला है, आप रहने दीजिए ना।
2: ये क्या आपसी मसला है? नहीं, हमारा आपसी मसला नहीं है, चुपचाप चल पड़, घसीटता हुआ लेके जाऊंगा नहीं तो यहाँ से।
0: माया, माया, माया, बोलो ना इन्हें, कुछ तो बोलो माया, कुछ तो बोलो माया, माया, माया।
2: सब बस माया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अगर हर महिला तुम्हारे जैसे हिम्मत से काम करने लगे तो ये घरेलू हिंसा खत्म हो जाएगी। सब बस माया, सब बस।

अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा कुन्नू कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: भाभी लो मिठाई खाओ।
2: अरे किस खुशी में?
1: वो सीता क्लास में फिर से फर्स्ट आई है।
2: वाह, तेरी बेटी तो बिल्कुल तूफान मेल है। मेरी रिंकी तो हमेशा थकी थकी, नंबर भी कम आते हैं, थकान मेल कहने लग गए हैं सब उसे।
1: ओहो भाभी, रिंकी को अनीमिया तो नहीं?
2: अनीमिया?
3: एनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
2: ललिता लो मिठाई खाओ।
1: अरे वाह, रिंकी भी थकान से तूफान बन गई।
4: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

लड़की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसे, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए मित्रों, अब चलते हैं कक्षा 5 की ध्वनि शाला में।
2: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी की तरफ से ढेर सारा प्यार और नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी भारत की नहीं है, ये कहानी है तिब्बत की। हम जो कहानियां कहते हैं, सुनते हैं, वे सब कहानियां हमारी संस्कृति का एक हिस्सा होती हैं, या यूं कहें कि संस्कृति का ही एक रूप पुरानी कहानियों में अभिव्यक्त होता है। जो कहानियां सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं, उन्हें लोक कथा कहते हैं। ये कहानियां आज हमें किताबों में पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन पुराने समय से लेकर आज तक ये लोगों की यादों में ही जीवित रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती रही हैं। दुनिया के हर समाज में लोक कथाएं सुनी सुनाई जाती हैं। इनमें से कुछ कहानियां मिलती जुलती होती हैं, लेकिन हर जगह की लोक कथा अपना कुछ अलग रूप लिए भी रहती है। आज जो आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये तिब्बत की लोक कथा है। तो आज हम सुनेंगे तिब्बत की लोक कथा, लेकिन कहानी का नाम क्या है ये तो मैंने बताया ही नहीं। आपने पूछा भी तो नहीं। तो आपने अगर कहानी का नाम पूछा है तो मैं कहानी का नाम बता देती हूँ। कहानी का नाम है राख की रस्सी। ये कैसा नाम है? ये ही तो नाम है, राख की रस्सी। आप सोच रहे होंगे बच्चों कि राख की रस्सी कैसे बन सकती है। रस्सी तो अलग होती है और राख अलग होती है, और राख की रस्सी कैसे बन सकती है? तो बस यही राज है इस कहानी का। इस कहानी में ऐसे बहुत सारे राज छिपे हुए हैं जिन्हें सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। तो हम शुरू करें अपनी कहानी। तो लीजिए, पेश है आप सब बच्चों के लिए एक लोक कथा, तिब्बत की लोक कथा राख की रस्सी। पता है बच्चों, लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था, चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। बस यही चिंता लोनपो गार को सताती रहती थी। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। बच्चों, जानते हैं आगे क्या हुआ? लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहां थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी पता है क्या हुआ? तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। अब बेचने से जो रुपए मिले, उससे उसने जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन पता है क्या किया? दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा पसंद नहीं आया, अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोन पुगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और पता है बच्चों क्या हुआ? हुआ भी वही कि वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे, लड़की सोच कर बोली। एक तरीका है, उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीद लिए। बोरे लोन पुगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। पता है आगे क्या हुआ? भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोन पुगार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोन पुगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। पता है लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोन पुगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। पता है बच्चों क्या हुआ होगा आगे? अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोन पुगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोन पुगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोन पुगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। कैसी लगी आपको कहानी? अब पता चला इस कहानी का नाम क्यों था, राख की रस्सी। दरअसल कहानी में जो सबसे अंत में हुआ, कहानी का नाम उसी के आधार पर रखा गया। लेकिन आप इस कहानी के और बहुत सारे नाम सोच सकते हैं। कहानी का नाम हो सकता है लड़की की चतुराई, या लड़की की होशियारी, या फिर लोन पुगार का घमंड चूर हो गया, या घमंडी लोन पुगार। आप इस कहानी का कोई भी नाम रख सकते हैं। कहानी में जो कुछ हुआ, जैसे जैसे घटा, बस आप उन्हें ध्यान से सोचिए और उसके आधार पर आप कहानी का कोई नाम रख सकते हैं। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि लोन पुगार अपने बेटे के बारे में इतना चिंतित क्यों था? कहानी में तो ये कहा गया है कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छू कर भी नहीं निकली थी। लेकिन क्या भोला होना अच्छी बात नहीं है? क्या होशियारी, बहुत होशियार होना ही चाहिए सभी को? और होशियारी का मतलब क्या है? तो बच्चों, भोलापन, सहजता, छल कपट ना हो, ये अच्छी बात है। लेकिन लोन पुगार अपने बेटे के बारे में ये सोच कर परेशान थे कि न जाने मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, दुनिया तो उसे बेवकूफ बना लेगी। लेकिन ऐसा नहीं था। ये अच्छी बात है कि लोन पुगार भोला था, होशियारी नहीं थी उसमें, यानी कि छल कपट उसमें नहीं था। लेकिन एक बात तो बहुत अच्छी थी, और वह क्या बात थी बच्चों? वह यह बात थी कि जब जब लोन पुगार ने बेटे को कोई काम करने के लिए कहा, तब तब लोन पुगार के बेटे ने वो काम किया। लेकिन लोन पुगार के बेटे ने अपने पिता से ये सवाल नहीं किया कि ये काम आप उसे क्यों दे रहे हैं। बस लोन पुगार ने अपने बेटे से काम करने के लिए कहा और लोन पुगार के बेटे ने वह काम कर दिया। अब आपको ये सोचना है कि अगर इस कहानी में लड़की नहीं होती, तो क्या होता? तो कहानी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती। कहानी कहाँ खत्म होती? वही जहाँ पहली बार लोनपोगार ने अपने बेटे से कहा कि तुम ये भेड़ लेकर जाओ और जौ के 100 बोरों के साथ वापस आना। तो कहानी तो वही खत्म हो गई होती। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं, नहीं, कहानी वहाँ खत्म नहीं होती। लेकिन क्यों नहीं होती? वह इसलिए नहीं होती, अगर लड़की नहीं मिलती तो कोई और मिलता, कोई और व्यक्ति मिलता लोनपोगार के बेटे को और वह इस समस्या का समाधान बता देता। अच्छा बच्चों, आप एक बात और सोचिए, क्या ये जरूरी है कि हमारे पास कोई समस्या हो और हर बार हमें कोई व्यक्ति उस समस्या का समाधान बताए? ये तो जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम कभी समझदार बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि समस्या आएगी और हमें लगेगा कि उस समस्या को सुलझाने के लिए कोई एक व्यक्ति हमारी मदद करेगा और फिर हमारी समस्या सुलझ जाएगी। यानी हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। और हमें करना क्या है? हमें यही करना है, अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उसका समाधान खोजने की कोशिश करें, खूब जोर डालें अपने दिमाग पर कि अच्छा ये समस्या है तो इसका समाधान क्या हो सकता है। लेकिन लोनपोगार के बेटे को हर बार वो लड़की मिल गई, लड़की ने एक समाधान बता दिया, वही समाधान लेकर लोनपोगार का बेटा अपने पिता के पास चला गया। तो यानी कि लोनपोगार के बेटे को तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपनी समस्याओं के समाधान खुद खोजने हैं। अगर नहीं भी मिल पाए मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तसल्ली तो होगी ना कि हमने मेहनत की है, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप अपने दिमाग में जितनी तरह के समाधान खोज सकते हैं वो खोजने की कोशिश करते, धीरे धीरे हम समस्याओं का समाधान करने लगते, बस ऐसे होता जाता। लोनपोगार के बेटे ने जब दूसरी बार लड़की से समाधान मांगा तो उसने ये भी सोचा था और उसे ये लग रहा था कि लड़की यहाँ जरूर आएगी। तो लोनपोगार के बेटे को ऐसा क्यों लगा कि वह लड़की मुझे दोबारा मिलेगी? अगर वह लड़की नहीं मिलती तो कहानी कैसे आगे बढ़ती? तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे कह रहे होंगे कि अगर यह लड़की दोबारा नहीं मिलती तो कोई तीसरा व्यक्ति मिलता, और कोई तीसरा व्यक्ति मिलता तो लोनपोगार के बेटे की समस्या का समाधान भी बता देता, तो कहानी फिर आगे बढ़ती। तो लोनपोगार ने उस लड़की की परीक्षा क्यों लेनी चाहिए? आपको इसका जवाब मिलता है कुछ? सोचिए। अब आपकी इस समस्या का समाधान करने के लिए ना तो लड़की आएगी और ना कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और ना ही मैं आपकी मदद करूंगी। तो बच्चे सोचिए कि लोनपोगार ने उस लड़की की परीक्षा क्यों ली? आप में से कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि लोनपोगार अपने आप को बहुत चतुर समझता था और उसे ये नहीं लगता था कि कोई दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा चतुर हो सकता है। ये तो हो सकता है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि लोनपोगार आखिर उस लड़की तक पहुंचना चाहता था कि वो कौन व्यक्ति है जो मेरे बेटे की मदद कर रहा है, वह उस व्यक्ति की चतुराई की परीक्षा लेना चाहता था। लेकिन कुछ बच्चे ये भी तो कह सकते हैं कि लोनपोगार अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित था कि मेरे बाद उसका क्या होगा। याद आया आपको कहानी में? बिल्कुल सही कहा आपने, लोनपोगार को ये चिंता रहती थी कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, और अगर कोई व्यक्ति मेरे बेटे की इस तरह से मदद कर रहा है तो यकीनन वह बहुत समझदार होगा, और अगर मैं उस व्यक्ति के साथ अपने बेटे को छोड़ दूं या उस व्यक्ति को अपने घर ले आऊं तो मेरे बाद मेरा बेटा और वह व्यक्ति साथ साथ रहेंगे, तो मेरे बेटे के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो लोनपोगार के बेटे ने जब हर बार आकर अपनी आपबीती सुनाई, उस लड़की की चतुराई के बारे में बताया, तो लोनपोगार को ये तसल्ली हो गई थी अगर इस लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी हो जाती है तो फिर मैं चैन से रह सकता हूँ, फिर मुझे अपने बेटे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए लोनपोगार ने उस लड़की की परीक्षा लेनी चाही। और उसने परीक्षा के लिए क्या चुना था? उसने परीक्षा के लिए एक असंभव बात चुनी थी। और ये असंभव बात क्या थी? असंभव बात यही तो थी, राख की रस्सी। यानी कि एक राख की रस्सी कैसे बन सकती है? रस्सी को तो हम पकड़ते हैं, रस्सी को पकड़कर हम ऊपर चढ़ जाते हैं, रस्सी से हम सामान को बांधते हैं और नीचे डाल देते हैं, लेकिन राख की रस्सी तो कैसे काम करेगी? और कहानी में ये भी तो कहा गया है कि राख की रस्सी को तो हम छू भी नहीं सकते, जैसे ही छुएंगे उसे वैसे राख बिखर जाएगी और रस्सी खत्म हो जाएगी। तो लोनपोगार को ये समझ में आने लगा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि राख की रस्सी बन जाए, इसलिए उसने लड़की की ये शर्त मान ली थी कि हाँ, मैं राख की रस्सी लेकर आऊंगी, लेकिन आपको उसे पहनना होगा। बस लोनपोगार यही मात खा गए और लड़की की चतुराई के सामने उनकी अपनी चतुराई धरी की धरी रह गई। तो मजा आया इस कहानी में? आपके पास भी तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारे चतुराई वाले सवाल होंगे जिनके जवाब खोजने में आपको मजा आएगा। तो आप कुछ ऐसी ही मजेदार समस्याएं खोजिए और उनके समाधान खोजिए और हमें जरूर बताइएगा। तब तक मैं उषा दीदी आप सभी से विदा लेती हूँ और आप सब बच्चों को ढेर सारा प्यार और नमस्कार, इस उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला, निर्माण सहायक मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेंट के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या है? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगे बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहे।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: एरी सुशीला, तेरो बालक ऐसो रो रहे है, भूखो है का?
2: हाँ, भूख ही लग रही होएगी।
1: तो यार शहद दे दे।
2: हाँ, तू 2 मिनट बैठ, में लेके आई।
3: मैं पागल वागल हो गई है का? तो उससे कितनी बार बोली है कि 6 महीने को होने से पहले बालक है माँ के दूध के अलावा कुछ और न देना चाहिए। ये बालक की सेहत को घना नुकसानदायक है।
2: संगीता की भी तो बालक हुआ हो, वो तो शायद देख रही है अपने बालकन ने जब वाके दूध न उतर रहो।
3: डॉक्टर की बात तो तेरी बुद्धि में पता न क्यों घुसना रही है। वाने कही ना, यू सब देने से बालक बीमार हो जावे। बे मतलब के काम करवा लो बस। बालक के स्तनपान करवाने से बालक की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी होवे, जासु बालक संक्रमण, एलर्जी और बाकी बीमारियों से दूर रहवे। बालक में हड्डी वाली बीमारी होने का भी खतरा कम रहवे और माँ बालक के संबंध में मिठास भी आवे। और स्तनपान न करवाने वाली महिलाओं में जल्दी गर्भाधारण करने की संभावना बनी रहे, खून की कमी और डिलीवरी के टाइम पे अधिक रक्तस्राव की भी संभावना बनी रहे, स्तन और अंडा से कैंसर का भी खतरा ज्यादा हो गए। तो इसलिए अपने बालक स्तनपान ही कराएं और 6 महीने का होने से पहले बालक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं।
4: यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से जनहित में जारी।
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

धरती मेरी धरती, लीजिए प्रस्तुत है सौर मंडल कैसे बना। श्रोताओं, ब्रह्मांड के रहस्यों से शुरू हुआ हमारा सफर आज हमें सौर मंडल के उद्भव पर ले आया है। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे सौर मंडल कैसे बना और बिग बैंग के आगे की कहानी। तो प्रस्तुत है सौर मंडल कैसे बना।

0: मानव जरा अपने नए कलर तो देना।
1: वो 12 रंगों वाले?
0: हाँ हाँ वही, चल जल्दी से ले आ।
1: पर दीदी वो तो नए हैं।
0: अरे तो क्या हुआ, और वैसे भी किसी को अगर कुछ दो तो अपनी सबसे प्यारी चीज दो, जो खुद को पसंद नहीं वो देने से क्या फायदा।
2: सृष्टि, अरे सृष्टि क्या हुआ भाई, क्या बात चल रही है।
0: विवेक भैया, मानव अपने नए कलर नहीं दे रहा, मुझे जरूरत है।
1: दीदी वो पुराने वाले कलर ले लो ना।
3: सुनो सुनो सुनो बच्चों, तुम्हारे पापा नवनीत अंकल को लेकर आ रहे हैं यहाँ। चलो चलो जल्दी से अपना कमरा ठीक कर लो।
0: कमरा क्यों ठीक कर ले?
2: अरे सृष्टि, नवनीत अंकल 2 दिन हमारे यहीं रहेंगे इसलिए।
1: अच्छा, वो टेलीस्कोप वाले नवनीत अंकल?
0: हाँ हाँ वही, पता है वो खगोल विज्ञानी है।
2: हाँ, रोज वो ग्रहों तारों और अंतरिक्ष की सैर करते हैं।
1: क्या अंतरिक्ष के सैर?
2: हाँ।
1: क्या वो अंतरिक्ष यात्री है?
0: अरे नहीं मानव, विवेक भैया का मतलब है कि नवनीत अंकल रोज अपने टेलीस्कोप से अंतरिक्ष को निहारते हैं, समझे?
1: अच्छा।
3: लगता है आ गए। नमस्ते भाई साहब।
4: नमस्ते भाभी जी। नमस्ते।
3: कैसे हैं?
0: नमस्ते अंकल। ठीक है पापा।
4: और विवेक, सृष्टि, मानव कैसे हो तुम लोग?
0: बिल्कुल ठीक अंकल,
2: बिंदास।
4: और बताओ क्या चल रहा है?
3: लीजिए भाई साहब, आने लीजिए।
4: अरे शुक्रिया भाभी जी। हाँ तो भाई, मानव का क्या हाल है?
0: अरे अंकल, मानव ने तो आपको अंतरिक्ष यात्री बना डाला।
4: सृष्टि, पिछली बार मिले थे तो मानव काफी छोटा था, सृष्टि से कुछ सामान या खिलौने को लेकर लड़ रहा था।
2: अरे अंकल, आज भी मानव एक छोटी सी लड़ाई लड़ रहा था।
5: लड़ाई? अच्छा, किस बात पे?
0: अरे पापा, अपने नए कलर मुझे देने में इसको परेशानी हो रही है।
2: अच्छा।
4: अरे सृष्टि, मानव कभी धरती ने हमें देते हुए कुछ नहीं सोचा तो हम सोचने वाले कौन होते? हम तो इस धरती के सामने बहुत छोटे हैं, फिर भी ये अपना प्यार देखो हम पर लुटाती चली जाती है।
3: बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब आपने, धरती ने तो बस देना ही सिखाया हमें।
4: बिल्कुल भाभी जी, भाई इस देने में ही तो पूरा ब्रह्मांड बन गया। ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ ये पता है? सब कुछ बस दिया ही दिया है।
0: हाँ अंकल, डॉक्टर अंजुम ने ब्रह्मांड के बारे में बताया था कि एक महाविस्फोट बिग बैंग के साथ पूरा ब्रह्मांड बना और फैलना शुरू हुआ।
1: हाँ अंकल, और ये भी बताया कि सारी मंदाकिनियां एक दूसरे से दूर भाग रही है, पर हमारे सौर मंडल का तो नंबर ही नहीं आया।
4: अरे आता कैसे भाई, बिग बैंग को हुए तो 15 अरब साल हो गए और हमारा सौर मंडल तो 4.5 अरब साल पहले ही बना है।
0: अच्छा अंकल, इस बीच में क्या हुआ?
4: देखो सृष्टि, इस बीच में मूल कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स बने, नए परमाणु बने जैसे हाइड्रोजन और फिर हीलियम। वैसे इस सब में बस कुछ मिनट ही लगे।
0: शुरुआत में तो तापमान बहुत ज्यादा था ना अंकल?
4: पर धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा हो रहा था, इसी कारण से तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम या हाइड्रोजन बनाने लगे। करीब 1,00,000 साल में तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास गिर गया।
1: अंकल फिर तो सबसे पहले मंदाकिनी ही बनी होगी।
4: देखो मंदाकिनी सबसे पहले ही बनी क्योंकि ठंडी हो रही गैस एक साथ हो गई। हाँ, इससे वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा अन्य पदार्थ को भी आकर्षित करने लगी। बाद में मंदाकिनियों के ये आरंभिक रूप अपने ही वजन से सिकुड़ने लगे।
0: और कोई अंतर नहीं आया अंकल?
4: सृष्टि, उनके और टुकड़े हो गए। ये टुकड़े इतने भारी थे जितने तारे होते हैं।
1: अच्छा, फिर क्या हुआ?
4: फिर ये गैस के गोले जो मंदाकिनी के ही टुकड़े थे सिकुड़ते गए। पर इस प्रक्रिया के दौरान उनका तापमान बढ़ गया।
0: कितना तापमान बढ़ गया अंकल?
4: लगभग 10,00,000 डिग्री सेल्सियस।
0: इतना तापमान तो तारे के केंद्र में होता है ना?
4: अरे बिल्कुल सही सही। बिल्कुल सही।
0: थैंक यू अंकल।
4: फिर ये गोले इस तरह तारे बन गए क्योंकि 10,00,000 डिग्री सेल्सियस तापमान का मतलब है कि इनके केंद्र में नाभिकीय अभिक्रिया होने लगी।
1: अच्छा।
4: पर केंद्र में गर्मी पैदा होने का मतलब हुआ कि इनका सिकुड़ना रुकने लगा और इन गोलों के आसपास की गैस और उसमें गैस के संघनन होने से धूल कण भी बने थे।
0: ये तो वैसा ही है जैसे बादल में वाष्प और धूल के कण होते हैं।
4: हाँ भाई वैसे ही, बस बादलों के केंद्र में ये नाभिकीय भट्टी यानी तारे नहीं होते।
1: और फिर क्या हुआ?
4: बस ये बादल थे, नेब्यूले जिन्हें निहारिकाएं कहते हैं। इनमें तारों के चारों ओर के धूल के कण गुरुत्वाकर्षण के कारण एक चपटी तश्तरी की आकृति में थे। हाँ, ये कण एक दूसरे से जुड़ने लगे क्योंकि वो लगातार एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे, और जब ये धूल के कण तश्तरी के मध्य तल की ओर गिरते थे तो कभी चिपक जाते थे, कभी कभार टूट भी जाते थे। हाँ, पर कुल मिलाकर तो इनका आकार बढ़ता रहा ना।
0: अंकल, ये सब कितनी देर चला?
4: सृष्टि, शायद बादल वाली परिस्थितियां कुछ लाख साल चली होंगी, पर तुम्हें याद रखना है कि ब्रह्मांड को बने करीब 10 अरब साल हो चुके हैं, यानी सौर मंडल का जन्म करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ।
0: ये कैसे पता चला?
4: भाई, बड़ा टेढ़ा सवाल है क्योंकि तब कोई घड़ी तो छोड़ी नहीं गई थी।
0: ये जवाब तो गोलमोल है अंकल। अरे दीदी, शर्माती क्यों हो? ये जवाब तो गोलमोल है अंकल। अरे दीदी, शर्माती क्यों हो? ये क्यों नहीं कहती कि ये तो कोई जवाब ही नहीं हुआ?
5: लिया भाई।
4: बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा देखो, कभी तुमने टूटते तारे देखे?
0: हाँ हाँ अंकल, मैंने देखे हैं।
4: शायद तुम्हें पता नहीं होगा सृष्टि कि ये तारे नहीं होते बल्कि ठोस कण होते हैं। ये धूमकेतु से आए भी हो सकते हैं, मंगल या चंद्रमा से आए टुकड़े भी हो सकते हैं, और मंगल तथा बृहस्पति के बीच के लघु ग्रहों के टुकड़े भी।
1: अरे, ये तो मुझे पता ही नहीं था।
4: पर ये सच है। और देखो, जब ऐसा कोई बड़ा टुकड़ा पृथ्वी पर गिरता है तो उसे उल्कापिंड या मेटियोराइट कहते हैं।
0: पर अंकल, ये भी मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ ना।
4: बिल्कुल नहीं हुआ।
0: तो
4: इस तरह के उल्का पिंडों का जब रेडियो एक्टिविटी के सिद्धांतों से आयु निर्धारण किया गया तो पता चला कि ये 4.5 अरब साल पुराने तक थे।
0: पर ये तो उल्का पिंडों की आयु हुई।
4: हाँ सृष्टि, मगर इन उल्का पिंडों के कुछ खनिज के सालों में सूर्य से निकले ऊर्जावान कणों के प्रभाव देखने को मिले। इसका मतलब सृष्टि, ये सूरज के बनने के बाद बने।
0: पर हो सकता है कि ये अरबों साल बाद बने हो?
4: नहीं, क्योंकि कुछ उल्काओं में ऐसे समस्थानिक यानी आइसोटोप मिले जो इन खनिजों में समाए तो आयोडीन की तरह रेडियो सक्रियता के कारण बदल गए ज़ीनॉन में।
0: इसका मतलब
4: ये सृष्टि कि आयोडीन का समस्थानिक आयोडीन 129 जिस प्रक्रिया में बना था उसके बाद अगर काफी ज्यादा यानी कुछ करोड़ साल भी बीत गए होते तो इस आयोडीन का क्षय ज़ीनॉन में हो गया होता, और ज़ीनॉन तो निष्क्रिय गैस है, वो उस खनिज में कैसे आती?
1: तो इसका मतलब सौर मंडल में बादल में पहले सूरज बना, फिर ग्रह और दूसरे ठोस पिंड।
3: मुझे तो बस इतना समझ में आया है कि करीब 15 अरब साल पहले ब्रह्मांड, करीब 4.5 अरब साल पहले सूरज, और लगभग तुरंत बाद ग्रह बने। अब मेरे ख्याल से मुझे चाय की जरूरत है, आपको भी क्या?
5: अब नेकी और इतनी लंबी पूछ है।
3: नीचे
4: भाई, भाई साहब, भाभी को तो मानना पड़ेगा।
5: हाँ,
4: एक बार में ही बात का निचोड़ निकाल लिया।
5: अरे हाँ, इसीलिए तो हम परेशान रहते हैं, कोई बात छिपा ही नहीं पाते।

0: अंकल, पृथ्वी भी तो ग्रह है, वो भी इस तरह सूरज के चारों ओर की गैस और धूल के बादल से बनी।
1: जवाब दो भाई।
2: हाँ, पृथ्वी भी इसी बादल में बनी जिसमें और 8 ग्रह बने।
0: 8 नहीं, 9।
2: अरे तुम्हें बताया नहीं था कि प्लूटो अब ग्रहों की बिरादरी से बहार हो गया है, इसलिए कुल 8 ग्रह ही बचे।
0: हाँ, अखबार में पढ़ा था और विज्ञान प्रसार की ड्रीम 2047 मैगजीन में भी।
2: ड्रीम 2047 मैगजीन? अरे भाई सृष्टि, तुम तो वाकई कमाल की चीज हो।
1: मैं कह लूं?
3: बोल दो।
1: जैसा पिता वैसी पुत्री है।

0: कमाल तो मैं हूँ अंकल, पर अगर सब ग्रह एक ही तरह बने तो उनमें इतना अंतर क्यों है?
1: भाई ये तो सूर्य प्रकाश बताएंगे।
2: हाँ भाई, ये तो मेरे भी गले नहीं उतरी। अब बृहस्पति गैस का गोला, पृथ्वी चट्टान और पानी के साथ साथ वातावरण से भी ढकी है, उधर बुध बिल्कुल पत्थर, तो शुक्र ग्रह अम्लीय गैसों से ढका।
0: यही नहीं, दूर वाले बर्फीले ग्रह भी हैं, शनि, यूरेनस और नेपच्यून भी।
1: देखो सृष्टि, दरअसल इनकी सूरज से दूरी में बहुत अंतर है। अब शुक्र सूर्य से इतना पास है कि इसकी सतह का तापमान 400 से 500 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पानी द्रव रूप में नहीं रह सकता, उबल कर भाप बन जाता है। अब भला बारिश क्या होगी, और फिर उसके वातावरण में अम्ल और अमोनिया।
0: पर बुध पर तो अम्लीय वातावरण नहीं है, यह तो सूर्य के सबसे पास है।
1: अरे बुध पर तो वातावरण ही नहीं है सृष्टि। हाँ, इतना छोटा है, करीब करीब चांद के बराबर, और उसका कमजोर गुरुत्वाकर्षण गैसों को बांध कर नहीं रख सका। सूर्य से निकलने वाली तेज कणों की आंधी ने जो हवा रही भी होगी उसको उड़ा दिया।
0: हवा नहीं, पानी नहीं, तो अंकल वहाँ रहेंगे कैसे?
2: अरे बेटा, पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन नहीं मिला है आज तक।
0: ये सच है अंकल?
1: हाँ बिल्कुल, 16 आने सच है सृष्टि। और शायद इसीलिए हमें अपने आप को धन्य समझना चाहिए।
0: हाँ अंकल, वैसे बनने में तो पृथ्वी की प्रक्रिया कोई खास नहीं थी, पर सूर्य की दूरी के कारण इतना अंतर।
1: हाँ, दूर होती तो शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसी ठंडी और बर्फीली होती, पास होती तो बुध जैसी पत्थर या शुक्र जैसी जहरीली हवा से ढकी होती।
3: और मंगल पर?
1: अरे मंगल ग्रह का तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस कम रहता है।
3: अच्छा।
2: अब पर नवनीत, वहाँ पहले तो पानी था।
1: हाँ, ऐसे प्रमाण मिले हैं सूर्य प्रकाश कि वहाँ पहले पानी बहता था।
2: हाँ।
1: लेकिन आज तो नहीं है।
3: और अंकल चांद पर?
1: वहाँ भी ना द्रव्य रूप में पानी है ना हवा। कुल मिलाकर ये जो हमारी धरती है ना, अद्भुत है।
2: हाँ, ये बिल्कुल सही बात।
3: धरती मेरी माता पिता आसमान।
2: अरे क्या बात है भाई, बड़े म्यूजिकल मूड में हो मानव। अरे चाय, अरे वाह वसुधा,
4: इसी खुशी में चाय हो जाए।
2: भाई ये काम तुमने बहुत बढ़िया किया वसुधा, लाव लाव चाय। और नवनीत तुम भी चाय लो ना।
4: पर भाई मैंने देवर जी की क्लास मिस कर दी।
1: अरे भाभी, आपके लिए स्पेशल क्लास लगा देगा आपका देवर। पर आज तो काफी देर हो गई है, क्यों सूर्य प्रकाश?
3: अरे अभी देर का हुई है।
4: बस बस, कल सुबह उठते समय 10 बहाने बनाओगे?
3: नहीं माना, मैं कोई बहाने नहीं बनाऊंगा।
1: अरे
5: बिस्कुट भी लीजिए ना।
1: हाँ। अच्छा सृष्टि मानव, अब ये बताओ कि कुछ समझ आया तुम लोगों को कि ये हमारा सौर मंडल कैसे बना और पृथ्वी?
0: हाँ हाँ अंकल, वो तो ठीक है, पर पृथ्वी जब इतने कणों के मिलन से बनी है तो आज इसमें कोर क्यों है? सतह पर क्रस्ट या परपटी क्यों है?
1: अरे वाह,
0: बीच में मैंटल क्यों है?
1: भाभी, आपके बच्चों को तो काफी कुछ पता है।
2: मेरे बच्चों को बहुत पता है।
4: ये तो ये बात है कि जो भी इन्हें बता दो याद रहता है।
1: कुछ भी कहें भाभी आप, लेकिन सृष्टि का जो सवाल है बहुत अच्छा। देखो सृष्टि, पृथ्वी का उद्भव तो हमने समझा, पर 4.5 अरब साल पहले बनने के बाद इसका विकास कैसे हुआ, ये एक अलग कहानी।
2: भाई नवनीत
1: जी,
2: और तो सब ठीक है, ये बताओ कि ये भौतिकी है, खगोल विज्ञान है या भू विज्ञान है?
1: देखो सूर्य प्रकाश, प्रकृति ऐसा कोई भेद नहीं करती। अब देखिए, पृथ्वी की आयु का पता नहीं चलता अगर उल्काओं का अध्ययन नहीं होता।
2: हाँ,
0: तो पृथ्वी के विकास को समझने के लिए हमें ये सब विषय पढ़ने पड़ेंगे?
1: अरे नहीं सृष्टि, उसमें तो वनस्पति की भी बहुत बड़ी भूमिका है। देखो, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो शायद हमारे वातावरण में ऑक्सीजन नहीं होती। तो क्या वनस्पति विज्ञान भी पढ़ोगे?
3: अरे अंकल, पढ़ने को तो हम जीव विज्ञान भी पढ़ लेंगे।
1: नहीं माना, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि सभी विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी होना पृथ्वी के विकास को समझने में हमारी मदद करती है।
3: तो अंकल, पृथ्वी के विकास के बारे में भी तो कुछ बताओ।
1: बोलो भाई, तुम लोगों को जानना है पृथ्वी के विकास के बारे में?
3: हाँ, बिल्कुल,
0: मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ।
4: हाँ चलिए, अच्छा है तो फिर आज टीवी बंद रहेगा। क्यों मानव सृष्टि बंद रहेगा?
2: पता है, ग्रुको मार्क्स

0: ने कहा था कि टेलीविजन ज्ञान पाने के लिए सबसे अच्छी चीज है, इसलिए जैसे ही कोई उसे ऑन करता है मैं दूसरे कमरे में जाकर किताब पढ़ने लगता हूँ।
1: अरे भाई चलो भाई, अगर सब चाहते हैं तो फिर पृथ्वी की ही कुछ बात कर लें।
0: हाँ, कर लो।
1: देखो ध्यान से सुनना बच्चों, पृथ्वी बनी करीब 4.5 अरब वर्षों पहले। उस समय तो इसका तापमान बहुत ज्यादा था।
2: अच्छा?
1: हाँ, 1.5 से 2000 डिग्री सेल्सियस के बीच।
2: इतनी गर्मी कहाँ से आई अंकल?
1: कई स्रोत थे सृष्टि, एक तो पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया ही कुछ ऐसी थी। भाई पृथ्वी अलग अलग पिंडों के टकरा कर जुड़ने से बनी थी, इसलिए वहां गुरुत्व ऊर्जा इकट्ठी थी। फिर आरंभिक वर्षों में पृथ्वी पर लगातार ठोस पिंडों की कणों की बौछार हो रही थी, इनकी गतिज ऊर्जा भी पृथ्वी ही सोख रही थी।
2: अच्छा, पर अंकल आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा?
1: मानव आज ऐसा हो तो रहा है पर बहुत कम।
2: अच्छा,
1: अब देखो कभी कभी ही उल्का पिंड गिरते हैं। खैर, पृथ्वी पर ऊष्मा का एक और स्रोत था। पृथ्वी के पिघले रूप में होने के कारण भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र की ओर इकट्ठे होने लगे थे।
2: वैसे ही जैसे पानी में तेजी से चीनी घोलने पर वो गिलास के बीचों बीच आ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: अगर मुझे ठीक से याद है नवनीत, तो यूरेनियम थोरियम वगैरह भी भारी तत्वों में आते हैं।
1: बिल्कुल सूर्य प्रकाश, यूरेनियम ही नहीं दूसरे बहुत सारे रेडियोधर्मी तत्व भी भारी होते हैं। भाई सच तो ये है कि भारी तत्वों के कुछ समस्थानिक रेडियो सक्रिय होते हैं।
2: तो ये भी पृथ्वी के गर्म होने का कारण था, है ना?
1: हाँ बिल्कुल सृष्टि। और जब ठोस कण बनने लगे, क्योंकि भारी को ठंडी होने लगी थी, तो इस क्रिया में वो ऊष्मा निकली जो उन्हें गलाने में खर्च हुई थी।
2: पर आज के दिनों में तो केवल रेडियो विघटन वाली ऊष्मा ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: यानी पृथ्वी से ऊष्मा खो रही है पर अंदर ऊष्मा उपज रही है।
1: हाँ कह सकते हैं। वैसे सूर्य प्रकाश, ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना नष्ट। वो कहते हैं ना, ना जायते ना म्रियते।
0: एक्सक्यूज मी, एक मिनट, वो तो आत्मा के लिए है।
1: हाँ, वो तो ऊर्जा भी वैसी ही है भाई। देखो पदार्थ से ऊर्जा बन सकती है, ऊर्जा से पदार्थ, ऊर्जा एक रूप से दूसरे में बदल सकती है, लेकिन ये नष्ट नहीं हो सकती।
0: ये बात तो खैर है।
2: अंकल आप रेडियोधर्मी विघटन के बारे में बात कर रहे थे ना?
0: हाँ, आ गई भाई।
1: अरे सृष्टि, उसके बारे में भी एक बड़ा ही रोचक किस्सा है।
2: किस्सा? फिर तो मैं भी सुनूंगा। हाँ, किस्सा तो बड़े ध्यान से सुनेगा ये मानव।
3: चलो, मानव को क्रिकेट और टीवी के अलावा भी किसी और चीज में मजा तो आ रहा है ना? कीप इट अप मानव।
1: तो सुनो बच्चों ध्यान से, इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष थे लॉर्ड केल्विन। अरे वही केल्विन जिनके नाम पर तापमान का यानी टेम्परेचर का स्केल है।
3: लॉर्ड केल्विन तो भौतिक विद थे ना?
1: हाँ भाभी, और उन्होंने गणना कर बताया कि पृथ्वी की आयु 4 करोड़ साल से अधिक नहीं हो सकती।
2: पर अंकल आपने बताया था कि पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है।
1: अरे सृष्टि, ये तो बाद में पता चला।
2: अच्छा, लेकिन अंकल लॉर्ड केल्विन की गणना क्या थी?
1: देखो मानव, ये गणना पृथ्वी को आरंभिक उच्च तापमान से वर्तमान तापमान तक ठंडा होने में लगे समय पर आधारित थी। पृथ्वी को आरंभिक उच्च तापमान से वर्तमान तापमान तक ठंडा होने में लगे समय पर आधारित थी।
0: भाई ये तो आसान और सीधी सादी बात लगती है।
1: अरे भाई सूर्य प्रकाश, सीधी बात तब होती जब आरंभ से अब तक पृथ्वी केवल ठंडी ही होती, पर पृथ्वी की कोर में रेडियोधर्मिता के कारण ऊष्मा भी पैदा हो रही है।
2: तो क्या इतने बड़े विद्वान को ये बात नहीं पता थी?
1: हाँ, नई सृष्टि, उस समय तक किसी ने रेडियोधर्मिता का नाम भी नहीं सुना था। ये बात और है कि आज तो हाई स्कूल का बच्चा भी रेडियोधर्मिता के बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानता है।
0: है ना सृष्टि, जानती हो ना?
2: बिल्कुल जानती हूँ। तो अंकल रेडियोधर्मिता की खोज कब हुई थी?
1: मानव, रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल और रोंजन ने संयुक्त रूप से 1895 और 96 के आसपास की।
3: अगर रेडियोधर्मिता की खोज लॉर्ड केल्विन के समय हो जाती तो उसकी पृथ्वी की आयु संबंधी गणना गलत नहीं होती।
2: लेकिन अंकल आप तो कोई किस्सा सुनाने वाले थे ना? अरे बुद्धू, यही तो किस्सा था।

0: मेरा मजाक उड़ाते हो।
1: अरे नहीं नहीं नहीं बेटा नहीं।
2: अरे नहीं मानव भाई, कोई किसी का मजाक कैसे उड़ा सकता है। देखो बेटा, होता यह है कि हम छोटी छोटी बातें अपने दिल से लगा लेते हैं।
3: और इतनी विशाल पृथ्वी की कहानी सुनकर हमें अब अपना मन भी इस धरती की तरह विशाल रखना चाहिए।
2: बिल्कुल
4: बेटा।
0: हाँ, अब मैं बिल्कुल समझ गया दीदी। अब आप मेरे सारे कलर ले सकती हो।
5: अरे वाह, मानव तो सच में विशाल दिल का हो गया।
0: अरे दीदी, जब धरती ने इतने रंग बिखेरे हैं, तो इन कलरों की क्या कीमत।
6: सौर मंडल कैसे बना, अभी आप विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती, आलेख एवं अनुसंधान चंद्रमोहन नौटियाल का था, निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता राजीव दुबे और प्रस्तुति सहायक संदीप छिकारा। इस कड़ी में भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, रजनीश शर्मा, लालिमा अनेजा, रिधिमा बग्गा, मेघा शर्मा और समीर ठुकराल।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज

हैं SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: दोनों को ही चाहतों ने चाहतों से मारा, इशिकारा इशिकारा इशिकारा इशिकारा इशिकारा इशिकारा इशिकारा इशिकारा।
1: अपने धंधे की फितरत समझिए,

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत

बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोले। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
0: ओ मुझे बुखार हो गया है।
1: अब्बा टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
0: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
0: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी। तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: भूलना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से बाय बाय।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: गगन खोखरी फतेह।

ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा या यूं कहें कि पिचक जाएगा या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम रोल नंबर एक,
2: साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर।
1: अरे वाह। नंबर दो,
3: मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर।
1: शाबाश। नंबर तीन,
2: बंद करो खुले में जाना, घर घर शौचालय बनवाना।
1: बढ़िया। रोल नंबर चार,
4: शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ।
1: अरे वाह। तुम
2: हैंड पंप के आसपास से सब गंदगी निकालो, पीने वाले पानी में क्लोरीन की गोली डालो।
1: बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। चलो अब सब बच्चों के लिए ताली बजाते हैं।
5: बच्चे तो ये बात जानते हैं, आप भी जान लीजिए।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ओले ओले ओले ओ सोना। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically. Students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाए और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
6: Let's go crazy.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.
9: Doctor?

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: अरे हमारे यहाँ कचरा तो काम वाली बाई या मम्मी उठाती है, ये अंकल कचरा क्यों उठा रहे हैं?
1: टीचर ने बताया था ना,
2: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
1: सफाई करना तो हम सभी का काम है। अपा एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूँगी।
3: ठीक है चलो, तो हो जाए कचरा पार्टी।
4: कचरा पार्टी।
1: हाँ, जब अपा घर का सारा कचरा साफ करते हैं ना, तो उसे कचरा पार्टी कहते हैं।
0: तो फिर हम भी करेंगे कचरा पार्टी।
1: हाँ, हमें जाने की कोई भी जल्दी नहीं है।
5: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है। तो हो जाए कचरा पार्टी।
2: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
5: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण, जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित करता है।
1: कचरा फैलाओ तो कितनी बुरी बदबू आती है।
0: और कचरे के आसपास चूहे, छुछुंदर, मक्खी मच्छर का घर बन जाता है और कीड़े भी लग जाते हैं
1: जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालो।
3: रुको तारा, पहले ये देख लो ये कचरा किस तरह का है।
1: कचरा अलग अलग तरह का होता है अब्बा।
3: हाँ तारा, ये देखो कि ये सूखा कचरा है या गीला कचरा है।
5: जो आसानी से सड़ जाए वो है गीला कचरा, और जो ना सड़े या कई सालों बाद सड़े वो है सूखा कचरा।
1: ये सड़ सकता है, इसका मतलब ये गीला कचरा है।
3: बहुत अच्छे तरह, हमेशा सोचो कि कचरा दोबारा किस काम आ सकता है।
6: इस गीले कचरे को गमले में डाल के मिट्टी से ढक दे तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
0: तो अंकल, क्या हम बचा हुआ हलवा भी गमले में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
3: नहीं चौधरी, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
1: वाह, कचरा भी आएगा दोबारा काम। तो ये गया गीले कचरे में, और मेरे पास है सूखा कचरा।
3: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह गड़बड़ी सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया, और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
1: हजारों साल तक सड़ते नहीं
4: और खतरनाक भी होते हैं,
3: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह। अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो
1: या फिर कहीं शीशे के टुकड़े काम वाली दीदी या कूड़ा इकट्ठा करने वाले भैया को चुके तो।
6: इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना पड़े।
3: और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार इसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कूड़े में फेंक दो।
0: वाह, बार बार इस्तेमाल।
1: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं। आइडिया।
3: अरे ये क्या खुसर खुसर चल रही है। हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।
7: अरे वाह, इसे तो मैं अपने टेबल पर सजाऊंगा।
2: तो तुम सब कब कर रहे हो कचरा पार्टी, हा?

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: माँ जी, मुझे टीबी है।
1: टीबी और छुपा कर रखा?
2: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दे।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: जंगल है, आधी रात है।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
3: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
3: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
2: क्या है राज?
3: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
4: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: बेटा दाई माँ से बात कर लेना, पर सब का समय नजदीक आ रहा है, उन्हें कभी भी आना पड़ सकता है।
1: दाई क्यों माँ, गांव में अस्पताल है, बच्चे का जन्म वहीं कराएंगे।
0: पर बेटा हमारे खानदान में सब लोग दाई के हाथों से ही जन्म लेते हैं, अब ये अस्पताल अस्पताल।
1: पहले का समय कुछ और था, अब तो इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होगा।
2: बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा।
0: अरे आशा बहू आओ आओ।
2: सुरेश की अस्पताल में प्रसव कराने की सोच एकदम सही है, अस्पताल में प्रसव सुरक्षित और फायदेमंद होती है। जैसे बच्चे का जन्म प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के द्वारा होता है, प्रसव के बाद खतरे के लक्षण पहचानकर उनका तुरंत इलाज किया जा सकता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ताकि जच्चा बच्चा को कोई संक्रमण ना हो, खून की जरूरत पड़ने पर वो स्थिति संभाल सकते हैं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर माँ को प्रोत्साहन धनराशि भी मिलती है, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में जांचों, दवाओं, एम्बुलेंस, ऑपरेशन, खून और खान पान आदि की भी सुविधा बिल्कुल मुफ्त है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो आशा बहू। सुरेश बच्चे का जन्म अब सिर्फ अस्पताल में ही होगा।
2: जे हुई ना बात, तो आप भी समझ गए ना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में प्रसव कराने से फर्क पड़ता है।
3: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Jan Jan ka rakhe dhyan, TB Mukt Bharat Abhiyan.
2: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
3: पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: महामारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। महामारी के दौरान स्वच्छता के लिए आप विविध साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पैड, टैम्पून, महामारी कप या साफ कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: यदि आप पैड का उपयोग करते हैं तो उसको जितना हो सके उतनी बार बदलें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार पैड को बदलना चाहिए।
1: महामारी में सबसे अच्छा संभावित विकल्प महामारी कप है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है।
2: महामारी कप सैनिटरी पैड और टैम्पोन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खून की मात्रा को एकत्र कर सकते हैं।
1: महामारी कप बैक्टीरिया के संक्रमण के जोखिम को कम करता है।
2: इसका दोबारा प्रयोग भी किया जा सकता है, इसमें खर्च भी कम होता है।
1: महामारी के दौरान साफ कपड़े का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक साफ कपड़े को मोड़कर पैंटी में रखें। प्रयोग के बाद उसे साबुन और पानी से अच्छे से साफ करके धूप में सुखाएं।
2: प्रयोग किए गए कपड़े को छूने से पहले हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहन लें।
1: गंदे कपड़े का 1 हिस्सा क्लोरीन और 9 हिस्सा पानी के घोल में कम से कम 20 मिनट तक भिगो कर रखें। अगर क्लोरीन नहीं है तो कम से कम साबुन के पानी में 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। पानी में साबुन की सही मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए देख लें कि पानी को घोलने और हिलाने पर उसमें बुलबुले हों।
2: हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहनकर गंदे कपड़े को सामान्य तरीके से साबुन और पानी से साफ करें।
1: साफ किए गए कपड़े को धूप में सुखाएं। बचे हुए साबुन के पानी को फेंकने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें डाल दें।
2: अपने हाथों से दस्ताने या पॉलिथीन को निकाल दें और हाथों को पानी और साबुन से अच्छे से धो लें।
1: महामारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।